नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त मंजरी वर्मा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: इस समय सुबह 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए

सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार। वंदन वार
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मन ही इंसान को ज्ञानी अज्ञानी सुखी या गुलाम बनाता है। बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। मन एक खेत या मंदिर की तरह है, जहां आप जैसे विचार रूपी बीज बोएंगे वैसी ही फसल या जीवन का सत्य प्राप्त होगा। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको बता देते हैं दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 327। संगीत सरता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। स्वर मंडल और मासुरी वादक अरविंद गजेंद्र गटकर को आप सुनेंगे, प्रस्तुति छाया गांगुली। सात बजे भूले बिसरेगे 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनिए त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर नेहा अगरकर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक।

सुबह और रात 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर, आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति रमेश गोखले। दिन में 10 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे अभिनेता शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। 11 कार्यक्रम रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल। बजे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 कार्यक्रम सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

शाम 4 बजे पिटारा में सुने आज के मेहमान साहित्यकार लेखक मनोज रूपड़ा से ममता सिंह की बातचीत, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 पर तराने नए पुराने हमारा दैनिक कार्यक्रम। छह बजकर 35 पर संध्या रजन। 7 बजे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए प्रहसन। महीने की आखिरी तारीख, लेखन SI इशरत और निर्देशन मुख्तार अहमद। आठ बजकर 15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुत करता रागवेन्द्र सिंह नेगी।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 327।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्धभूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसल कर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते

हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानी से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

0: संगीत सरिता।
1: नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है विविध भारती के खजाने से। आज हम एक ऐसी भेंट वार्ता चुन लाए हैं, मतलब वर्ष 1985 की संगीत सरिता की उद्घोषणाओं के साथ सुनते हैं ये बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: ये विविध भारती आज संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक श्री अरविंद गजेंद्र गढ़कर से ले गई भेंट वार्ता सुनिए। भेंट कर रहे हैं के शैलेंद्र।

श्रोताओं, आपने इस तार वाद्य की झनकार सुनी और उसके साथ साथ वंशी की मधुर आवाज पेंगे लगा रही थी। जाहिर है आज हम एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवा रहे हैं जिनका इन दोनों साजों से विशेष संबंध है। ये जो तार वाद्य था स्वरमंडल और वंशी तो आप जानते ही हैं, और ये कलाकार नहीं बल्कि हम इन्हें साधक कहेंगे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी

30 साल पहले मैंने जब इस सास को सुना, ऐसे ही छेड़ते, बड़े गुलाम अली खान साहब छेड़ते थे इसको, तो मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियलिटीज इतनी है कि क्यों नहीं इसको डेवलप किया जाए कि एक स्वतंत्र रूप में, सोलो के रूप में। तो मैं इसके पीछे पड़ा। तो फिर पहले तो चलते रहा कि इस पर बजाए क्या, आखिर एक बार छेड़ दिया तो खत्म हो गया, फिर क्या करें आगे। तो मैंने सोचा कि दोनों हाथ पियानो की तरह अलग अलग चलाएं। देखिए ऐसे एक ये हाथ।

0: वाह, कैसा लगा?
1: इतने सारे तारों को नियंत्रित ढंग से एक उंगली के कमाल से बजा कर रखना। अच्छा, इसमें तार कितने होते हैं?
0: 36।
1: अच्छा,
0: अब इस पे तो मीन निकल नहीं सकती।
1: हाँ,
0: तो इस पर हमने प्रयास किया है कि मीन निकाले। देखिए, प्रयास है, है? प्रयोग है।
1: वाह, आपने इसमें सितार का भी सम्मिश्रण कर दिया है।
0: जी
1: हाँ। वाह। अच्छा, ये एक बात श्रोताओं को हम जरूर बताना चाहेंगे कि आपकी रुचि संगीत में कैसे हुई शुरू से?
0: बात ऐसे, वो तो एक इत्तेफाक की बात है ना, एक्सीडेंट था वो, कि मैं भोसला मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था
1: जी,
0: और वहाँ बैंड मास्टर जो हमारे थे वो एक बैंड पर धुन बिठा रहे थे। और तो एक दिन क्या हुआ कि बंसी बजाने वाला जो लड़का था वो आया ही नहीं, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि तू बजाएगा जरूर। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा तुझ में वो गुण है, संगीत की कुछ रुचि है तू, और तुम्हें गिफ्ट है, तो ये बंसी ले लो और घर जाके रियाज करो और कल जा आके ये धुन बजा।
1: अच्छा, तो सबसे पहले मतलब वंशी से शुरुआत किया?
0: जी हाँ जी हाँ।
1: और वंशी के बाद फिर तब आपने स्वरमंडल?
0: स्वरमंडल तो 31 साल है, वंशी तो मेरे बचपन से, यानी समझे कि 47 साल से मैं बंसी बजा रहा हूँ।
1: अच्छा
0: जी हाँ। और शुरू शुरू में तो यहाँ जो DML ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे दिनकर राव आमिम्बल, उनके स्टाइल में कॉपी करता था। उसके बाद पन्ना बाबू, पन्ना लाल जी घोष, उनसे थोड़ा सा सीखा। और मेरे असली गुरु तो मथुरा के मुरलीधर शास्त्री हैं।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझे संगीत में कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी दोनों का मुझे ज्ञान दिया।
1: मतलब संगीत का सफर आपका काफी पुराना है।
0: जी हाँ,
1: बचपन से आप इसमें साधना करते रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि आप शिक्षा में भी डिग्रियां काफी हैं आपको, और वो भी कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जिनका विशेष रूप से लोग कहते हैं संगीत के साथ सामंजस्य नहीं होता। जैसे आप साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, तो ये सारी डिग्रियां और उसके साथ साथ संगीत की साधना, ये दोनों का मेल कैसे कर पाए आप?
0: अब देखिए, मैं फिजिक्स के तरफ आकर्षित हुआ साउंड जानने के लिए, कि म्यूजिक तो साउंड की दुनिया है,
1: मतलब संगीत में भी जो विज्ञान का पक्ष है।
0: तो फिर उसके बाद आपके मानसिक स्तर पर उसका परिणाम होता है, तो साइकोलॉजी में हमने एमए कर दिया। फिर पढ़ाना अच्छा चाहिए, तो इसलिए मैंने एजुकेशन की एक डिग्री ले ली, चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी करके बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो गए।
1: मतलब संगीत का मंथन आपने हर तरह से करने की कोशिश की ताकि उसमें से जितने भी रत्न निकाले जा सकते हैं वो कर लिया जाए। अच्छा, जब इतनी सारी विधाएं और इतने सारे पक्षों में आप बटे हुए हैं, तो संगीत के लिए रियाज का वक्त कैसे निकालते हैं?
0: देखिए, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं अपने को, है ना, उसमें से 8 घंटा आप रेस्ट ले और कुछ करें, 16 घंटे तो पड़े हैं। अगर हर मिनट आप अगर उसके तरफ लगाए आपकी जो चीज है, तो आपको बहुत कुछ आ सकता है।
1: अच्छा, और संगीत रचना में
0: जी,
1: तो जाहिर है कि आपने काफी योगदान दिया होगा।
0: जी हाँ।
1: तो उस बारे में कुछ बताइए।
0: ऑल इंडिया रेडियो में मैं प्रोड्यूसर था।
1: अच्छा।
0: तो फिर लाइट म्यूजिक और क्लासिकल दोनों देखता था, तो फिर वहाँ ऑपेराज करना, संगीत रूपक करना, फिर हर महीने का गीत, ये सब मैं करता
1: था। ख्याल है काफी वर्षों तक आपने आकाशवाणी में भी सेवा की है।
0: 20 साल, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आकाशवाणी की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखना मुझे।
1: अच्छा, ये संगीत के साथ साहित्य एक और पक्ष है जिसमें भी काफी लोकप्रिय है आप, और आपने काफी उसमें नाम भी पाया है।
0: मैंने
1: तो साहित्य को आप अपने संगीत से और विज्ञान से कैसे?
0: क्या हुआ कि जब संगीत मेरा प्रोफेशन बन गया तो कुछ आउटलेट मुझे चाहिए था एनर्जी को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ह्यूमरस स्टोरीज पहले लिखता रहा, फिर संगीत समीक्षा, फिर किसी ने कहा कि आप नॉवेल लिख के देखिए, तो वो भी लिखी, तो 10 नॉवेल्स लिख दी मैंने, और आजकल एक बड़े नॉवेल पे मैं काम कर रहा हूँ।
1: अच्छा, संगीत से संबंधित कोई किताब आपने लिखी?

0: जी हाँ, स्वरांचा बनात, और बड़ी हाँ बड़ी अच्छी किताब
1: मराठी में।
0: जी हाँ, वो लोगों को बहुत पसंद आई।
1: अच्छा, आप तो देश के अलावा विदेशों में भी काफी भ्रमण कर चुके हैं, तो क्या कुछ विदेशों की अपनी अनुभूति बताइए।
0: हाँ जी, टोक्यो यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया टॉक्स के लिए, हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन म्यूजिक। तो वहाँ मैं गया था, तो फिर मैंने कहा कि फिर चलो हांगकांग चलें, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह वगैरह, तो बहुत से देश घूम के आया। तो मैंने ये देखा कि स्वरमंडल और बंसी दोनों का वहाँ बहुत प्रभाव।
1: अच्छा, विदेश में लोग काफी पसंद करते हैं इसको।
0: और स्पेशली स्वरमंडल तो बहुत ही लोगों को पसंद आता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ, शुक्रिया।
1: अच्छा, अब श्रोताओं को कुछ सुनाएं।
0: जरूर सुनिए।

0: वाह, अच्छा तो हम श्रोताओं से विदा लें और पहले हम श्रोताओं की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद।
2: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक अरविंद गजेंद्र गटकर से भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रहे थे के शैलेंद्र।
3: और अब सुनते हैं अरविंद गजेंद्र गटकर की बांसुरी पर।

बांसुरी पर पहाड़ी धुन आप सुन रहे थे। कलाकार थे अरविंद गजेंद्र गढ़कर। आज विविध भारती के खजाने से हम ले आए थे उनके साथ की गई के शैलेंद्र की बातचीत। और अब इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी को आपकी दोस्त मंजरी वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

अभी आपने सुना फिल्म तुम सा नहीं देखा का गाना, स्वर थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी के, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत ओपी नैयर का। आइए सुनते हैं अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म सती परीक्षा का गाना, आवाजें आशा भोसले और साथियों की थी, शब्द रचना नाजिम की और संगीत सन्मुख बाबू का।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म रानी रूपमती का गाना, स्वर मन्ना डे का, रचना भरत व्यास की, सुरों में डाला SN त्रिपाठी ने।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुनिए पवन पुत्र फिल्म का गाना आवाज शमशाद बेगम की और साथियों की। गीतकार थे दीपक और संगीतकार दीपक और संगीत चित्रगुप्त का।

दोस्तों, विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को आपकी दोस्त मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का जन्मदिन है। आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं के फिल्मों के माध्यम से। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गाना।

अभी आपने सुना फिल्म छाया का गीत, गीत के बोल थे राजेंद्र कृष्ण के, संगीत सलील चौधरी का और युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आपने सुना बुढ़ा मिल गया का गाना, युगल स्वर थे आशा भोसले और किशोर कुमार के, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत राहुल देव बर्मन का। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म अभिमान से लिया है हमने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, स्वरबद्ध किया मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया SD बर्मन ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अंतराल का।

अभी आपने सुना फिल्म चिपके चिपके का गाना। युगल स्वर थे लता मंगेशकर और मुकेश के। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था एस टी बर्मन ने।

अभी आपने सुना गबन फिल्म का गीत, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए फिल्म प्यार का सपना का गाना, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार चित्रगुप्त।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
3: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
3: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
5: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
3: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
6: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
7: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
8: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
10: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहियां पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, NCERT की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
8: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी, ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज की त्रिवेणी में बात करेंगे शहर की। साथियों, शहर सिर्फ इमारतों, सड़कों और भीड़ का नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हर शहर का अपना मिजाज होता है, अपनी रफ्तार होती है और अपनी एक अलग पहचान। कहीं सुबह की शुरुआत चाय की प्याली और अखबार से होती है, तो कहीं रात तक जगमगाती सड़कों पर जिंदगी दौड़ती रहती है। किसी शहर में सुकून मिलता है तो कोई शहर अपनी चहल पहल से दिल जीत लेता है, और कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होने लगता है। शायद इसी खूबसूरत, रंगीन और थोड़े शरारती अंदाज के लिए कहा गया होगा, ये शहर बड़ा अलबेला। तो चलिए शहर के इसी दिलकश अंदाज को महसूस करते हैं फिल्म सिंगापुर के इस गीत के साथ।
1: शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर

0: शहर की एक खासियत ये भी है कि ये अपने भीतर न जाने कितने सपने समेटे रहता है। छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर आते लोग अपने साथ उम्मीदें लेकर आते हैं, कुछ नया करने की, अपनी पहचान बनाने की और शायद किसी अपने के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने की। शहर की भीड़ में जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो वही अनजान शहर उन्हें अपना लगने लगता है। फिर ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच भी एक घर, एक साथी और एक सपना काफी होता है। कुछ ऐसा ही एहसास है अगले गीत में, जहां शहर सिर्फ जगह नहीं बल्कि दो दिलों के सपनों का पता बन जाता है। सुनते हैं घरौंदा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: दो दीवाने शहर में

हर शहर की अपनी एक रौनक होती है और उस रौनक में वहाँ के लोग सबसे खास रंग भरते हैं। बाजारों की चहल पहल, सड़कों की रफ्तार, कॉलेज जाते युवा, दोस्तों की महफिलें और शाम ढलते ही रोशन होती गलियां। शहर की जिंदगी कई रंगों से मिलकर बनती है। खासकर बड़े शहरों में फैशन, स्टाइल और आत्मविश्वास का अपना ही अंदाज देखने को मिलता है। यही वजह है कि फिल्मों में भी शहर को अक्सर युवा ऊर्जा और आकर्षण के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। अब हमारे इस शहर सफर का आखिरी पड़ाव भी कुछ ऐसा ही चुलबुला और मस्ती भरा सा है। तो तैयार हो जाइए शहर की रौनक और युवा अंदाज से रूबरू होने के लिए फिल्म रक्षक के इस गीत के साथ।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने अभी ट्यून किया है देश का नंबर 1 चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा चित्रलोक कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त मंजरी वर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी जीने का अंदाज ऐसा हो कि हर दिन मुस्कुराने की कोई वजह मिले, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और उनके लिए आभारी रहें। बीते कल की चिंता और आने वाले कल का डर छोड़कर आज को खूबसूरती से जिए, क्योंकि जिंदगी वही खूबसूरत है जिसे हम खुशी, उम्मीद और सुकून के साथ जीते हैं। तो आइए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: फिल्म पीके का गाना आपने सुना, शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीत लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत शांतनु मोइत्रा का।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
5: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
4: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
6: अगर तुम मिल जाओ।
4: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
7: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: दोस्तों, आज हम लोकप्रिय गायक शान को उनके जन्मदिन पर विविध भारती परिवार की ओर से बधाई दे रहे हैं। शान ने पॉप संगीत से लेकर हिंदी फिल्मों के गीतों तक अपनी अलग पहचान बनाई और बड़ी सुरीली और मधुर आवाज में उनके गीत हम सुनते आए हैं। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना।

0: ये था गाना फिल्म चल पिक्चर बनाते हैं का, जिसे गाया शान और सुनिधि चौहान ने, गीत के बोल लिखे सीमा ने और संगीत दिया गौरव ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। अभी आपने सुना था फिल्म सनम रे का गाना, और इसे गाया था शान ने, और गीत लिखा मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया जीत गांगुली ने।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ,
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: एक विलक्षण गायक।
6: अरे ओरे हे।
5: संगीत के साधक।
6: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
6: राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमिर दिन रात।
5: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
7: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
5: पहली अक्टूबर से हम शुरू

0: रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: लीजिए सुनिए अब अजब गजब लव का गाना। मोहम्मद इरफान और अंतरा मित्रा की आवाजों में गीत लिखा कौसर मुनीर ने और संगीत साजिद वाजिद का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बता दें आज आपको कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी है और ये हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचता है। ये साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और कला को दुनिया भर में जोड़ने का काम करता है। अनुवादक अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल की तरह होते हैं। ये दिवस उनकी मेहनत और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का एक अवसर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म बागी 3 का गाना, जिसे गाया रोचक और शान ने, गीतकार गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा, संगीत रोचक कोहली का।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
5: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
6: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
4: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनिए फिल्म सिंग इज ब्लिंग का गाना। आवाज दी है मंज मुशिक और साशा ने, गीतकार मनोज मुशिक और रफ्तार और बिग ढिल्लन, संगीत मंज मुशिक का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चितलोक। समय हो गया है एक अंतराल का।

विविध भारती से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, और आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म जेवरिया जोड़ी का आवाज यासिर देसाई और अल्तमश फरीदी के गीतकार रश्मि विराग, संगीत तनिष बागजी का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
6: विविध भारती से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चित्तलोक। आइए सुनिए अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म दिल तो बच्चा है जी का गाना, आवाज मोहित चौहान की, गीतकार नीलेश मिश्रा और संगीतकार प्रीतम का।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
6: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
5: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
5: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी का दिन शुभ मंगल हो। आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: हिंदी सिने दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषि दा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषि दा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। तो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषि दा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषि दा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

0: 1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: ऋषिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में ऋषिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने ऋषिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में ऋषिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन।

0: बसाए, कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किया, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, एडी। तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे।
1: पर फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर?
2: हाँ,
1: बचपन
2: वो देखा था, तो उस वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही, उनकी वजह से हूँ।
1: जी जी जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम ऐसे चिन्ह नजर आए?
2: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
1: अच्छा।
2: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था, अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहां पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें, डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है। तो मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है। लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब की, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनालिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है।
1: नहीं, आप जो हैं, जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
2: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर एसएससी बोर्ड में था और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया और दो साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया और बाद में तीन साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था
1: जी।
2: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम। वहाँ काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
1: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
2: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना, स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी।
1: अच्छा।
2: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया
1: जी।
2: फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। हाँ, उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
2: मेरी पसंद का कोई गीत? यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर।
1: अच्छा।
2: गमन से
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे?
2: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: क्या बात है,
1: थैंक यू।
0: सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं
0: अपने।
1: ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं, हर गीत पे
1: जैसे
0: हम
1: वो
0: नहीं
1: कहते हैं ना
0: गवाएंगे
1: कि
0: आपको अगर
1: बच्चों
0: आप
1: को,
0: ऐसा चाहेंगे तो।
1: हाँ कि बच्चे के बोलते हैं कि
0: जी
1: महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ। नहीं, मैं गोवा में रहता हूँ।
0: नहीं, आप
1: तो
0: बेफिक्र रहिए।
1: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई। पहले मैंने,
0: अच्छा
1: मेरा पहला काम जो है
0: पहला
1: वो
0: काम
1: एज
0: जो
1: एन
0: था,
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे। और वो कॉलेज में, मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में रांची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को असिस्ट कर रहे थे और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे, नब कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया और मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया। और उस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिम्पल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी। परेश
0: जी
1: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी। तो बहुत मज़ा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है।
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज ए राइटर, वो भी राजुल की बदौलत। मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
0: अच्छा
1: योगदान है। तो
0: जी,
1: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
0: झुकाव,
1: उस तरफ
0: रुझान।
1: बढ़ाया, रुझान। तो वो, उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था
0: जी
1: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था। तो मैं उस वक्त, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था रांची प्रोडक्शंस में। हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
0: जी
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो, उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
0: कमांड है।
1: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख विख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
0: अच्छा।
1: उसमें उस वक्त वीजे थी वो, उस वक्त एमटीवी में। तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स, वीजे लिंक्स जो होते हैं
0: जी
1: कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी। मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी। और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला। 1-2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया।
0: जी
1: फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में, 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था।

0: ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज।
1: जी
0: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो MTV के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा। बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं MTV में।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी हाले।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: थैंक
1: बहुत खूब।
0: यू। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया,
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवा।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी
1: जी
0: चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था। 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था। और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में। और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का। तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस
0: जी
1: ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते। तो
0: जी
1: बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी। और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
0: जी
1: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं

0: कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था। तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
1: अच्छा।
0: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने, मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए। और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता हूँ।
1: और जब तक है जहाँ उससे भी आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना हुआ?
0: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था। और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक एड किया था एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था
1: जी।
0: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग। और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया।
1: अच्छा।
0: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो YouTube पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके सीन्स के साथ ऑडिशन दिया। फिर वो हुआ, उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो मैं प्ले करने वाला था उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडने करने लिया था।
1: अच्छा।
0: उस वक्त वो शानू की असिस्टेंट थी।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
1: मौका
0: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला ठीक है एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है।
1: अच्छा, 2 दिन
0: बाद
1: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ सेम रोल। अच्छा। कहीं मैंने इतनी बार ऑडिशन लिया और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था,
1: वो कुछ
0: और मैं उस वक्त एकदम ऐसा था 90 किलो का।
1: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार बार राउंड्स देने पड़ते हैं?
0: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म।
1: अच्छा।
0: में ऑडिशंस के अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत जरूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं MTV में मैंने मतलब काफी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा MTV बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान, और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग का।
1: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं
0: बहुत सारे
1: तो कैसा महसूस हुआ, या वो हिम्मत हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आपकी, नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं आगे और कोशिश कर।

0: देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसीलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत। और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना, वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
0: बिल्कुल.
1: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही, और उनकी बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब
0: हम सब
1: इसमें
0: साथ
1: तुम्हारे
0: में
1: साथ
0: हैं.
1: में हैं। तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, तो बस
0: बिल्कुल.
1: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो
0: वो जो
1: जाएगा।
0: कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
1: जी
0: में, तो
1: हाँ
0: वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने. उसमें डायलॉग भी है
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: कि
1: उसके
0: मेरा
1: डायलॉग मैंने
0: जन्म
1: लिखे
0: ही,
1: हैं फिल्म
0: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि
1: के।
0: मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ
1: यस
0: है.
1: यस,
0: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके बारे में
1: फिल्मिस्तान
0: थोड़ा सा.
1: मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंद्रास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे, उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मेरे ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था, और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे, और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड। मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज़्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया, और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ, उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए। और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है। और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में, मेन लीड में वो भी। बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला, उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए, और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया, और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई, और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी आया,
0: फिल्मिस्तान.
1: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
0: बिल्कुल. कहते हैं ना, जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिल
1: वो
0: जाता
1: मिल
0: है.
1: जाता है, तो वही
0: ऐसे
1: हुआ मेरे
0: कुछ हुआ.
1: साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
0: बिल्कुल. यहाँ पर आपकी पसंद का गीत.
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं हम अपने सुनने वालों को.

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोरा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है।
0: भी आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा, थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: उन्हें
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में,
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी।
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
0: पैदा
1: हूँ, और जब मैं लोगों
0: हुआ।
1: को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है, और उसमें
1: जी
0: भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं
1: हाँ,
0: के साथ काम किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
1: बहुत।
0: कैसा ये
1: हाँ,
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी।
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चाली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ, और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें, और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी, यानी वो भी नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
0: मैं प्रोड्यूसर
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम
0: हूं।
1: सिंह चार्ली का हूँ, जो
0: जी।
1: एक खूबसूरत फिल्म है, और
0: बिल्कुल।
1: यस।
0: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की, 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
1: मे भी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं मैं,
0: जी।
1: वही रचा
0: और हम
1: बसा है
0: उससे काफी
1: अंदर।
0: रिलेट कर पाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: टोटली रिलेट कर पाते हैं, और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला मतलब चेहरा भी वही है। आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं, इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो किया है,
0: मेहरूनी की बात करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
0: जी जी जी जी।
1: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक हुआ मिडिल क्लास वाला,
0: और दर्शकों से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो आ है। जाता है।
1: हाँ।
0: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
1: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, हाँ। मतलब काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
0: बिल्कुल
1: इतना यकीन
0: वो सुनवा देते हैं, वो गीत हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी हाँ,
0: आप.
1: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन.
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर खत्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के जरिए, जब तक है जान के जरिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं, और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब
0: बिल्कुल.
1: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी, और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फोन आया और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे, नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
0: कंफर्टेबल है.
1: कंफर्टेबल हैं, तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको, फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे,
0: जी.
1: फाइनली फिर वो जेके जो है जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया, और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक
0: बड़ा
1: बदलाव
0: होगा
1: आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है.
0: जी
1: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था. जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन 1,

0: और वो ओटीटी पर मतलब एक एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे,
1: बिल्कुल
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीजन टू आया और रिस्पांस जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया।
1: बिल्कुल
0: स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया।
1: जी
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई। और मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
1: बिल्कुल
0: फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या
0: नहीं, लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा। और सुमन कुमार जो हैं वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे, और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे। तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, और लेकिन
1: कहीं
0: राज
1: कहीं
0: एंड
1: वो
0: डीके जो है
1: पंच.
0: ना, हाँ, वो
1: हाँ
0: कभी कट नहीं करते हैं। जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते। और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोज पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में। और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, और उसमें से कुछ जमती हैं कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है। मतलब ऐसा
1: बिल्कुल
0: कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की। राजन
1: बिल्कुल
0: डी के बहुत हमें मतलब आज़ादी देते हैं, जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार, आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है। आज मनोज सर के साथ शूट है, राजन डी के हैं, और मैं जेके बनूंगा और मज़ेदार कुछ कमाल करेंगे। और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है। तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर
1: हमें भी
0: रहा
1: इंतजार है, बहुत बेसब्री से
0: हूँ।
1: इंतजार है हमें.
0: थैंक यू।
1: अच्छा, इन सीरीज में जहां पे एक्शन सीरीज होती है, तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं, वहां पर कैसे हेल्प होती है?
0: नहीं,
1: स्टंट्स आप
0: वर्कशॉप
1: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते
1: उठा
0: हैं,
1: लेते
0: और वो कोई
1: हैं?
0: बोलता भी नहीं है कि
1: जी
0: आप करो। अगर
1: हाँ
0: डिफिकल्ट
1: हाँ
0: होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं। और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहाँ पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
1: यूज्ड टू हो जाते
0: यूज
1: हैं.
0: टू हो जाते हैं। कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था। मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया फिर वहाँ से ज़मीन पे गिरा। लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है। मेरे
1: और
0: तो नहीं है।
1: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें, किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से?
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफ़ी मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफ़ी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
1: बिल्कुल
0: एक्टर्स हैं, और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ।
1: जी जी जी जी
0: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया। प्रियदर्शन जी के साथ काम किया,
1: जी
0: सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
0: किशोर दा का एक और काफ़ी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज़ उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ। और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट
1: हाँ
0: पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को, या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं, तो उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं, या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन क्योंकि जो ऑडिशन होता है ना उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सेलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते ही रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा और टिके रहना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें वो गया, काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर
0: तभी
1: गेम में हैं
0: मौके।
1: ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं, या लुकिंग फॉरवर्ड टू कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मैं किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको
0: कमाल हो जाएगा।
1: बहुत, हाँ लेकिन वो खाली वो सपना है वो तो मुझे पता है लेकिन हाँ

0: अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना
1: जुड़ना
0: चाहूंगा,
1: चाहेंगे।
0: जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर एक फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
1: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जिसे बोलते हैं मन का सुकून?
0: मैं घर पर रहता हूँ, दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ। फैमिलीज जो हैं, मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ, और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज़्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूज़िक बहुत पसंद है,
1: म्यूजिक तो हम जानते ही आपको
0: फिल्में बहुत पसंद
1: जी,
0: है, तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ,
0: जी
1: और बहुत मजा आया बातचीत करके।
0: थैंक यू,
1: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी,
0: थैंक यू, थैंक
1: और आप
0: यू,
1: बार बार आएं और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए, मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में जी। मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं
1: जी
0: वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से
1: जी
0: आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: रंग तरंग
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हो चुका कताए ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। कार्यक्रम का आगाज बेगम अख्तर की आवाज में सुनकर ये गजल। कलाम है उस्ताद शायर दाग दहलवी का, तर्ज है खयाम की।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। गायक और संगीतकार हरिहरन की आवाज में समाप्त कीजिए खुमार बारा बनकवी का ये कलाम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए तलत अजीज की आवाज में, मौसकी है फिदा हुसैन की।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: धनक घटा कलियां और तारी हैं तेरे रूप, गजलें हो या गीत मेरे सब में तेरा रूप। कार्यक्रम की अगली गजल आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में, शायर हैं कतील शिफाई।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

साथियों, कार्यक्रम की अगली गैर फिल्मी रचना सुनिए गायक और संगीतकार लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अनामिका की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है राजीव आनंद ने, संगीत है एडविन फर्नांडिस का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: कार्यक्रम में अगली आवाज है अदनान समी की, गीतकार है समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला एल्बम सॉन्ग है अलीशा चुनोई की आवाज में। गीत है शाम अनुरागी का, संगीत है बिद्दू का, एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं ललित सेन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है शोभा मोदगल की आवाज में। गीतकार है अनिल पांडे, संगीत है संदेश शांडिल्य का, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और

0: ये संदेश तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
0: आपने लिखा है, सप्रेम नमस्कार बिमलेश दीदी जी और अजीत सर जी, 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए, जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
1: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
1: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
1: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
1: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
1: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
1: श्रोताओं, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
1: जी,
0: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
1: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
1: जी,
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
1: जी,
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
1: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
1: जी,
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
1: जी,
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
1: जी,
0: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि ये सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी,
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है, लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
1: जी,
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये जरूर जानें।
0: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
1: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
0: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
1: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
1: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना।
2: अरे मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: चाचा,
3: सच्याकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम

0: कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
1: बंदूक भी चलाते हो?
0: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
1: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
0: हाँ।
1: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
0: जरूर पुत्र, जरूर। लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो। हुँ?
1: जी चाचा।
2: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
3: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहाँ वो नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
2: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
3: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
2: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
3: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
6: अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर ये तो हमारा काम है।
4: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
4: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ पॉलिश दे। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
2: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
4: एक मिनट मान सिंह, तो मैनू फिट होने दे यार। एक मिनट, मैं अपने घुटने जरा से मोड़ लेता हूँ। गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूं ना।
3: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा

0: should the chair be on?
1: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
0: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
1: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
0: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
1: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं, तब तक मारूंगा नहीं, तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूँ। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया, ऊपर से निकल गया, मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं, अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
3: ओए कायरो, और भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
3: कंट्रोल रूम, दिस इज सेको 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे?
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार।
7: आ रही है।

0: में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
1: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
2: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
3: अगला गीत सुनिए शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, तर्ज है नदीम श्रावण की, फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, अगला गीत है शान और श्वेता पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लोए और फिल्म का नाम है नई पड़ोसन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सती जो उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम का अगला शानदार गीत है शान और श्रेया घोषाल की मिली जुली आवाजों में। गीत रचना सुआनंद किरकिरे की, संगीत है शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम है पीके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अगला गीत सुनिए शान की आवाज में। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है झनकार बीट्स।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में। गीतकार हैं अरुण भैरव, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से

0: जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें गाने।
3: साथियों, आज यादों की महफिल सजी थी मशहूर गायक शान के शानदार गीत विद भारती से, कार्यक्रम यादों की महफिल।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हमसफर चलने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको याद दिला दे क्या है आज की इबारत। उसके दामन की खुशबू, उसके कदमों की आहट फजाओं में है, तो भी देखो ना मन नहीं जागे पीछे सपनों के भागे। और जिया में चमके जैसे कोई अंगारा, कुछ ना पूछो दिल का हाल बुरा होता है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं तो सीने में क्यों झनकार हुई। दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं प्रेम की पुकारें, ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। चाहत का है हरसू असर, चलती हूं मैं तारों पर, और उसका बस चले तो वो दौड़ के आएगा। ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, अपने संदेश आसान सरल भाषा और कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें। वैसे आपको पता है आज की खास बात ये है कि जो हम आपसे पूछना चाहते थे वो ज्यादातर बातें आप पहले ही लिख चुके हैं, पर हम फिर भी आपसे पूछते रहेंगे।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज का ये सुरीला सफर हम तय करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को याद करते हुए और उनकी फिल्मों के गीतों को सुनते हुए। 30 सितंबर 1922 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उन्हें हिंदी फिल्मों में मिडल ऑफ द रोड माना जाता था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और कुछ समय तक गणित और विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन भी किया था। उन्हें प्यार से ऋषि दा कहा जाता है और इसके आगे की बातें अब आप हमें बताएंगे। तो साथियों, आज बातें होंगी ऋषि दा की फिल्मों की। उनकी फिल्मों की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी फिल्मों के नाम हमें बताएं और ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों से क्या मैसेज देते थे हमें वो भी बताएं, और उनकी फिल्मों में जो कॉमन सिचुएशन दिखाई जाती थी, जो हास्य की जो सिचुएशन होती थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ था वो भी बताएं। और ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली कौन सी थी और भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, और ये भी बताएं कि इस वक्त आपको ऋषि दा की कौन सी फिल्में और गीत याद आ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम में हम और आगे बढ़ जाते हैं। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, ऋषि दा की फिल्मों की खासियत और उनकी फिल्मों के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित क्लासिक हिंदी फिल्म अनुपमा एक शांत, गहरे भावनात्मक जुड़ाव और पिता पुत्री के रिश्तों की कहानी। तो हमें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी लिखकर भेज दें और इस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला था वो भी बता दें, और इस गीत में आवाज, गीत, संगीत किसका है वो भी बता दें, और साथ में ये भी बताएं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसको लिखा है मशहूर शायर कैफी आजमी ने। बाकी चीजें तो आप हमें बताने वाले हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार।

3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार।

आंखों की नमी, कहीं आंखों को नम कर देने वाली संवेदनाएं, उनकी सादगी भरी कहानियां हमें हंसाते हुए भी जीवन का थोड़ा और करीब, जीवन को थोड़ा और करीब से समझा देती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में और उनके गीत

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है छाया।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:00

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

0: हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार प्रियांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां

0: ही सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार और ममता सिंह जी यानी रेडियो सखी ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल
2: अच्छी है। तो आज मेरा मन कर रहा है ममता जी, बहुत दिनों बाद हम सखी सहेली के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो आज मैं आपकी प्रशंसा करूं।
1: अरे पूछने की क्या जरूरत है, करनी है करिए ना, पूछ कर प्रशंसा क्या करना, अरे कीजिए, खूब जम के कीजिए। प्रशंसा भले किसे नहीं अच्छी लगती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या है कि
1: किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी, ना ही पूछने की जरूरत होती है, बस धीरे से प्रशंसा कर दी जाती है, कभी एक छोटी सी प्रशंसा भी दिल को छू जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रशंसा केवल तारीफ नहीं, रिश्तों के बीच की दूरी कम करने वाली एक भाषा है।
1: बिल्कुल, और भाषा जो है पुल का काम करती है। जरा सोचिए मंदाकिनी जी, अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद में शिकायतों की जगह थोड़ी सी प्रशंसा आ जाए तो शायद ये जनरेशन गैप भी कुछ कम हो जाए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर साड़ियों का संसार भी कुछ ऐसा ही है, कोई आपकी साड़ी देखकर बस इतना कह दे, अरे वाह ममता जी, आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने, और आप पर बात फब भी रही है, तो मन में एक छोटी सी खुशी उतर आती है।
1: बिल्कुल, अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि आज बहुत अच्छी लग रही है, बेटी अपनी माँ से कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है, और माँ तारीफ कर दे, शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, तो ये कैसा संवाद है कि लोगों को जोड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं तो उन अनुवादकों को थोड़ी सी उन अनुवादकों की थोड़ी सी प्रशंसा हम कर देते हैं जो एक भाषा के

0: भाषाओं को दूसरी भाषा तक बड़े ही सुंदरता से पहुंचा देते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए सखी सहेली में बात करते हैं प्रशंसा की, जो हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी के जरिए लिखेंगे। और हाँ, बातों ही बातों में ममता जी, हमने समझा दिया है आज के विषय क्या है।
0: बिल्कुल, तो चलिए एक बार दोहरा भी देते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि जो हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है पीढ़ियों में अंतर, और जो शब्द देते हैं हम श्रोताओं को वो आज प्रशंसा, अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा, और साड़ियों का संसार है जिसमें हम बोमकाई साड़ी की बारे की चर्चा करेंगे, और भाषाओं के बीच एक पुल जो आज अनुवाद दिवस के मौके पर।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारे श्रोता बताएं कि वो जब किसी रचना को, अनुदित रचना जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, खासतौर से कि कोई मूल रचना पढ़ी है, मान लीजिए बंगला साहित्य का साहित्य बड़ा समृद्ध है, और वहां से जब हिंदी में अनुदित कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है।
1: और इसके अलावा ममता जी वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आप भी साहित्यकार हैं तो क्या अनुवाद किया आपने कभी। कई बार हमारे श्रोता जो हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो भी कोई अनुवादक के रूप में काम कर रही हो, तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं
0: जी। और कौन सी किताब अनुवाद की है, और साथ में ये भी कि कई भाषाओं में, अंग्रेजी से हिंदी, और यही बात फिल्मों में भी तो लागू होती है। जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो जब वो अनुदित फिल्म होती है हिंदी में डब की हुई तो थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि वो लिप सिंक होता है, वो तो एक अलग ही विषय। तो अनुवाद के बारे में चर्चा होगी, हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो, और फिलहाल क्या करें।
1: फिलहाल ये भी बता दें कि सूजी के व्यंजन भी हम बनाने वाले हैं।
0: आप बनाएंगे ना?
1: मैं बनाऊंगी और आप खाएंगी।
0: सारे श्रोता मिलके खाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: फिलहाल गाने का स्वाद लेते हैं।
2: मिला।

0: भाई प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं. प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है. हाँ, कोई छोटा सा तोहफा दे देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है. और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना.
1: अरे आप तो मेरी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिसने मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है.
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए. यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में प्रेम करने का अलग तरीका होता है. हाँ? तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है.
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाएगा.
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया.
1: आप मुझे बोंकाई साड़ी देने वाली है ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: हाँ, तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा.
0: अच्छा, आपके प्रति. मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं.
1: थोड़ी सी कम.
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे.
1: हाँ, और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी.
0: ओहो, हाँ, जब पहन के आएंगे तब. तो ठीक है, प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं. मंदाकिनी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है. लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना.
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी और आप मेरी प्रशंसा करेंगी उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा. फिलहाल हमारे जो श्रोता है खासतौर से हमारी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें.
0: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी. बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है. बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान बन गई है और प्रमुख हथकरघा साड़ियों में गिनी जाती है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसकी बुनाई में इकत और अतिरिक्त धागे से बनी सजावटी बुनावट का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है. बॉर्डर और पल्लू में महीन ज्यामितीय और पारंपरिक आकृतियां साड़ी को एक अलग स्थान बना देती है. साथ ही बोमकई साड़ियों में प्रकृति और लोक जीवन से प्रेरित बहुत सारी आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं ममता जी, जैसे मछली और कोई पक्षी है ना. इस तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं, शंख हैं, कमल है, मंदिर है और धार्मिक प्रतीकों से जो प्रेरित आकृतियां होती हैं वो इस साड़ी में हमें दिखाई देती हैं.
0: जो और ज्यामितीय डिजाइन भी बनती है. और बुमकई साड़ियों में अक्सर गहरे और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है. लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है. वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है.
1: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
0: मतलब दो साड़ी चाहिए आपको.
1: नहीं नहीं, लाल और मैरून. हाँ, एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून.
0: अच्छा,
1: या तो, नीला और मैरून.
0: तो मतलब ये
1: इस अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली.
0: अच्छा, आप कॉम्बिनेशन. हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी. वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला. यही विरोधाभासी रंग संयोजन बोमकई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है.
1: हाँ, और बोमकई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है. पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है. और बोमकई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क

0: है दोनों प्रकार से तैयार की जाती है। मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी।
1: ओ तो बड़ी महंगी होती है।
0: कोई बात नहीं।
1: कॉटन मुमकई हल्की आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क मुमकई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है। और मुमकई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए एक मुमकई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक सुंदर मुमकई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है। धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है।
0: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं, बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है। और हथकरघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है। ममता जी,
1: और आज मुमकई साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है। डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
0: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। मुमकई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुंच रही है।
1: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है मुमकई। और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती है
0: देखने लायक होती है। बहुत ही सुंदर होती है मुमकई साड़ी। और अगर हमारी बहनों में किसी के पास है, जो सखियां सुन रही है, तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या मुमकई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
1: और दुपट्टा या स्टोल भी है तो उसका भी जिक्र करें। और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: तो मंदाकिनी जी, आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वैसे एक बात कहें, अनुवाद करने की जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है,
1: मिल जाता है।
0: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच, बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है, और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है, इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आप साहित्यकार हैं, आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है और आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद, और इसीलिए आज का ये खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
0: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव, विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं। और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब कोई किसी किताब का अनुवाद किया जाता है तो जैसे इत्र की शीशी को इत्र की शीशी से इत्र दूसरी शीशी में जब डालते हैं पलटते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा इत्र उस शीशी में रह जाता है। तो जो अनुवाद किया जाता है तो जो भाषा की अहमियत है, वो जो संवेदनाएं हैं, थोड़ी न थोड़ी उसमें छूट जाती है। लेकिन फिर भी जब हम अनुवाद करते हैं तो न पढ़ने से अच्छा होता है कि अनुवादित चीजों को, अनुदित चीजों को पढ़ा जाए, और हम उसमें मीन मेक निकालते रहे कि अरे इसमें तो वैसा लिखा है और यहाँ पर अनुवाद उसने ऐसा किया है।
1: हम क्या करते हैं, भावों को अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता। तो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो, जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है, और साथ ही भारत जो हमारा देश है यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता जी, हिंदी की बात करें, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है, और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है, और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है जरा सुनते हैं।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन होगा और हमारे श्रोता भी तैयार रहे।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहें।
5: हाँ,
0: हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रहे हैं
5: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी कि हमारे श्रोता तैयार रहे दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूलें और अपने विचार लिखना नहीं भूलें।
0: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाए और विविध भारती सुनते रहे।
5: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई।
0: बिल्कुल,
5: हम लाइव होंगे ना
0: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
5: बिल्कुल।
0: अभी आप जो पढ़ने वाली थी,
5: हाँ वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुंचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
0: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सब टाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सब टाइटल्स के साथ देखता हूँ।
5: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
0: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहां पर मशीनों के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं, एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफी समृद्ध बना दिया है और तेजी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
5: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती है,
0: अनुवाद हो जाता है। कई बार उपयुक्त शब्द

मेरा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे छोटे, मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनके भोलेपन पर. और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते ऐसा होता है.
0: आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं. तो दरअसल जो जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है.
1: बिल्कुल सही कहा. और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है. और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं.
0: बिल्कुल. और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये बहस कहाँ से कहाँ चली जाएगी. समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है. दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये स्वाभाविक है दो पीढ़ियों के बीच का
1: अंतराल होगा. लेकिन माता पिता को लगता है ममता जी कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनके बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं. शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है. और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई, दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई. जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है. तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है, और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है. और वही पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है. तो दोनों अनुभव अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं.
0: बिल्कुल सही बात है. दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं. बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है, वहीं युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है. उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रहे हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है. और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता था. लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे. पहले माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करते थे.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है. युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है,
1: ये और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता. और लड़की हो या लड़का बहुत ही सहज स्वीकार भी कर लेते थे रिश्ते को. अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं. तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है. इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे. इस तरह की बात जो हम करते हैं ना, वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती है.
0: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है. पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही. आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं. वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं. यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है, तो उनका ये कहना होता है अरे भाई यहीं पर हमारे घर घर हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना
1: है, वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें जीना चाहते हैं और हमें उन्हें जीने देना चाहिए।
0: बातें कितनी भी कर लीजिए, रहिए इर्द गिर्द गीत के साथ, सुनते हैं ये गाना फिल्म।

0: बिल्कुल सही कहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, और आपका साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ममता जी।
1: मुझे भी आपका साथ बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन हम इस पर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले एक जरूरी बात अपने सखियों से खास तौर से साझा कर ले, सखाओं से भी।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल रफ्तार जब हौसलों से मिलती है तो इतिहास रच उठता है, और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा। किरण पाहल, एम आर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज, इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराया अपना तिरंगा, और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। ये सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी, बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला, और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को, जो गोल्डन गर्ल्स कहलाएं, और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
0: होती। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती कि लड़कियां हैं तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लेकर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है, लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो कर भी रही है।
1: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
0: बिल्कुल
1: लीक से हटकर कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी है जो कह रही है कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन ही मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए, कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
0: बिल्कुल सही कहा, एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसे अच्छी नहीं लगती, रेडियो सखी ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है, फिर वो सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगली 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।

0: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो, और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है। किसी के अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना। इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से, और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और मैं तो करता हूँ जरूर प्रशंसा।
0: अब कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो वो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: गाने की प्रशंसा करने वाली है क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं हाँ। जो आपके दिल में निवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हाँ। हमारे लिए हाँ। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे हैं जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगा देता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी आप खाएंगी तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगी।
0: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया है, सूजी का हलवा बनाने वाली है या उपमा या फिर कुछ डोसा।
1: बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी है हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती है वो हमसे। देखिए एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च लौकी पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें थककर फिर उसको रख दें। तब तक लौकी को कद्दूकस कर लें और अच्छे से धोके उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दें और हरी मिर्च भी डाल दें। साथ ही मसाले नमक अजवाइन ऑर्गिनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक लें। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटें दबा दें जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
0: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में मिठास है
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात
1: वो है संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार। और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े वॉल वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए।
1: जी, मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहां बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट, तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूं।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे।
0: जी जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी,
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से ये रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का, विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही
0: है। क्या बात है।
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर,
1: जी, जी।
0: खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी, जी।
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे, तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था उनकी आवाज से उनके, और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो
0: जी।
1: कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे, तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया। वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे,

0: उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां, जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है स्कूल छोड़ गई कोई बात नहीं, स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
1: क्या बात है।
0: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
1: अच्छा।
0: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
1: जी, जी, जी।
0: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी। एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी। आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले ये जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
1: अच्छा।
0: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी।
1: 3 साल में एक
0: मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
1: क्या बात है।
0: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
1: क्या बात है,
0: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहां के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
1: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
0: मैं रिसर्च उस तरह से, देखो मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहां भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: उससे वो पूरा माहौल जो ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
1: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए।
0: जी,
1: मैं भी समृद्ध हुई इस बात से
0: जी।
1: तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
0: ये बंबई का ही है और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे।
1: जी, जी।
0: रमन मिश्र जी जो हमारे बहुत अच्छे किताब, उनकी भी दुकान वही है बंबई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए है उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, और तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
1: अच्छा।
0: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं।
1: जी।
0: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक लोकल था, और

0: फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा। तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए, क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी। उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरे कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया, लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
1: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी, या अपने आप लिख जाती है
0: कहानी? लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
1: बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
0: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरी कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
1: बिल्कुल,
0: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
1: जी जी,
0: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी, और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सैक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
1: जी,
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सैक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
1: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दे कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन है, संगीत के बहुत शौकीन है जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति जिसमें तीन कहानियां साज नासाज और आमाजगा और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
2: अच्छा,
1: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य।

0: तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज नासाज में
1: जी
0: शायद सेक्सोफोन है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: ये सेक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सेक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ। वहां पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा।
0: जी
1: एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपक सफेद बाल, और वो सेक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सेक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, वो जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
0: क्या बात है।
1: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया।
0: असर किया।
1: तो सेक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सेक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद।
0: जी
1: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चाल थी, वहां कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे,
0: जी जी
1: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सेक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, किसी भी हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
0: बिल्कुल नहीं बताया जाता,
1: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज नसाज का।
0: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी,
1: जी,
0: जिसमें
1: जी,
0: सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है, तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
1: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
0: जी,
1: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सेक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
0: जी।
1: वो इस लिहाज से कि सेक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सेक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी,
0: और दुख में,
1: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
0: बिल्कुल।
1: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज है, सेक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर्व
0: जी, पंडित कुमार गंधर्व,
1: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में, उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे, उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूं, बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो

0: चितारवाद का अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
1: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
0: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते। अच्छा, दिक्कत एक ये आती है, एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है
1: जी,
0: है ना। उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
1: जी।
0: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
1: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
0: जी जी,
1: तो ये क्या कहानी है, कैसे किसी के मन में?
0: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी। हाँ। असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
1: शॉर्ट फिल्म थी कोई,
0: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
1: जी जी।
0: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी।
1: हाँ।
0: जो जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
1: जी,
0: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
1: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
0: नहीं,
1: लिए
0: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था।
1: हाँ।
0: जिनका
1: पर आपकी हाँ, किताब शामिल थी उस,
0: हाँ, किताब शामिल थी मेरी
1: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और हाँ, लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म।
0: हाँ,
1: बेहतरीन।
0: हाँ, वो असल में जैसे भी एक विज्ञापन फिल्म थी।
1: हाँ।
0: वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान है
1: जी। बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: बहुत प्यारे वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
1: मौजों की रवानी
0: है,
1: शोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना
0: जी।

0: बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना, फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं, हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रोपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं, तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आपको जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आपको फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई ढंग है चिट्ठी लिखने का?
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारे छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता है। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहाँ और वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहां से फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया, फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया। मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो तुम क्या दिक्कत है? तुम मैं मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं फेल हुआ, वो मेरा चेहरा देखते रह गए, तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूला एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तुम उसमें आ जाओ। तो मैं वहां गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुला, उन्होंने कहा होगा और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉर्ट

0: किस तरह से लिए जाते हैं, कोई अगर मीडियम शॉट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
1: अच्छा,
0: चारुलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है। 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
1: जी जी,
0: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताते कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
1: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
0: नहीं मिला,
1: नहीं मिला।
0: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
1: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
0: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी पास नहीं हो पाऊंगा।
1: ओके
0: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
1: जी,
0: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो, गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
1: जी।
0: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
1: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
0: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
1: बस
0: तो बस बहुत हो गया।
1: हाँ।
0: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: अच्छा, मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
1: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा आप बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
0: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनाने, उसने पूछा ही, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं 6ठी फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
1: अच्छा।
0: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
1: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
0: उसके मतलब कारण पास हो गया।
1: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने पास किया कि नहीं?
0: बिल्कुल पास किया होगा।
1: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
0: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
1: जी।
0: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
1: जी। क्या बात है।
0: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है, नीता के 4-5 भाई हैं और मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर घर में पहुंच जाती है।
1: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
0: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, वो पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है
1: जी। साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम है, सुनते हैं यही गाना जी।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की, कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी।
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए हैं, तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी,
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूं। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक है वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग है वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में एक बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितनी कसम जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उस पर एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसम कस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
0: जी जी,
1: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है। तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब पिंग भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है। अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
0: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
1: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग

0: होती है।
1: जी
0: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने रंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
1: तुझी में बाट पाते।
0: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है
1: जी।
0: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उतनी धसते जा रही है
1: जी।
0: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है जो उसका अतीत है
1: जी जी।
0: तो वो जो सीन है ना वो आपने नहीं लिखा है,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्य को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
1: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं, शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़
0: जाते हैं। सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: एक बहारो मेरा जीवन भी सवारो, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति,
1: जी
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखने
1: अब
0: वाले? आ रही है
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ।
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसे आमाज का कहानी जो थी वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था बसंत के साथ
0: जी।
1: और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया
0: जी।
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, उसके साथ घूमता फिरता उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था।

0: तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया, और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था तो आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे
1: जी।
0: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
1: लिखना बाकी है,
0: लिखना बाकी है जी।
1: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैट किए हुए और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रतिसंसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लिखने?
0: नहीं, फिल्मों का, फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती है जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी और उनके ही सारे फेस्टिवल, विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीजें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी, और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी
1: जी, बिल्कुल
0: है ना, उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
1: जी,
0: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड, ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
1: जी जी जी।
0: शिक्षा और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी। फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफसाइड। ऑफसाइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है, तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती है। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां,
1: तो ये सब अपनी हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
0: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
1: जी,
0: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
1: जी,
0: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है, तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
0: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ, मोटे मोटे शब्दों में
1: जी,
0: कि किसकी किसी तरह की मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना, तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है
1: जी जी।
0: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है
1: जी जी।
0: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
1: बिल्कुल, तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
0: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था, मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती है मिठाई तोलने की उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का

0: टेबल था और लिखता था कुछ, और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
1: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
0: हाँ एकांत चाहिए,
1: एकांत चाहिए। हाँ,
0: मैं अभी भी अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
1: हाँ,
0: काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
1: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं। लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
0: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक, मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूं ना भाई, मैं लेखक तो हूं, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें, तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरे भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
0: उत्कृष्ट चित्रकार
1: ये आप कहते हैं, तो चित्रकारी के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
0: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी,
1: जी
0: हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ हैं, उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ हैं, उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में, साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं, बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं, और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है, और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
1: जी जी।
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन करना बड़े कैनवास
1: में। बढ़िया।
0: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए, और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था।
1: जी जी।
0: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?

0: से पहले उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो
1: जी जी,
0: लेकिन जब तक नहीं सुनाओ तब तक उसको नींद नहीं आती थी। तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही है, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है। फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

जागरूकता का माध्यम बना सकते हैं। बात शुरू हो किसी खबर से और पहुंच जाए पर्यावरण, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों तक। जरूरी नहीं कि हर बात में तर्क वितर्क हो, कभी दोस्ताना अंदाज में कही गई एक छोटी सी बात भी सोच हमारी बदल सकती है। हम एक दूसरे को टोकने के बजाय समझाएं, सवाल पूछें और अच्छे काम के लिए प्रेरित करें। आखिर बदलाव हमेशा बड़ी आवाज से नहीं आती, कई बार दोस्तों के बीच हुई मीठी सी बातचीत भी नई सोच की शुरुआत बन जाती है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। दोस्तों, कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलिए चर्चा का ये क्रम अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के बारे में, जो कि प्रतिवर्ष आज के दिन यानी कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन उन लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में इस तरह पहुंचाते हैं कि उसका असली मतलब और भावना बनी रहे। आसान शब्दों में कहें तो अनुवादक अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम करते हैं। आज की दुनिया में अलग अलग देशों के लोग पढ़ाई, व्यापार, नौकरी, विज्ञान, तकनीक और आपसी बातचीत के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में भाषा की वजह से किसी को परेशानी न हो, इसमें अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं समझता तो जरूरी जानकारी हिंदी में मिल सकती है। इसी तरह हिंदी की किसी अच्छी कहानी, कविता या किताब को दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके दुनिया के दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अनुवाद सिर्फ शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना नहीं है, इसमें भावनाओं, विचारों और संस्कृति को भी समझना पड़ता है। एक अच्छा अनुवाद वही होता है जिसे पढ़ते समय ऐसा लगे कि बात उसी भाषा में शुरू से कही गई थी। इस दिन हमें अनुवादकों और दूभाषियों के काम को समझने और उसकी मेहनत की सराहना करने का मौका मिलता है। फिल्मों की डबिंग से लेकर किताबों के अनुवाद, सरकारी दस्तावेजों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों तक अनुवाद हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहीं न कहीं मौजूद है। आज इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अनुवाद करना पहले से आसान जरूर हुआ है, लेकिन इंसान की समझ और भावनाओं को सही तरीके से पकड़ने में मानव अनुवादकों की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हमें यह संदेश देता है कि भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश हमें एक दूसरे के करीब लाती है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है।

0: है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छता हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है और बचपन से लेकर बड़े होने तक या जीवन के किसी भी पहलू को देख लें, स्वच्छता हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी भी है और एक तरह से देखें तो डेली रूटीन भी है। और दोस्तों जैसा कि हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमारी जिम्मेदारी होती है कि घर के आसपास की सारी जगहों को भी साफ सुथरा रखें और कोशिश ये करें कि हमारे द्वारा कभी भी गंदगी न फैलाई जाए। स्वच्छता क्योंकि जीवन का एक अहम हिस्सा है तो इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है स्वच्छता की संस्कृति और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। और इस विषय पर हमसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा।
3: साथियों, आज हमारी वार्ता का विषय है स्वच्छता की संस्कृति और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। संस्कृति शब्द का अभिप्राय हमारी अस्थायी आदत से न होकर के हमारी उस जीवन शैली से है जो कि हमारे रगों में बहती है, हमारे संस्कारों में बसी होती है। आज हमें आत्ममंथन करना होगा कि क्या स्वच्छता हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है या यह केवल कागजों, नारों और विज्ञापनों तक सीमित है। हमारे सिंधु सभ्यता जो कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही, अगर हम वहां पर देखें तो वहां भी हमने स्वच्छता को लेकर के जो सड़कें हैं दोनों तरफ समानांतर ढकी हुई नालियां, सोखते ढक्कनदार कचरे डालने के लिए गड्ढे, स्नानागार, तो सब कुछ की व्यवस्था हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम अपने अतीत से ही स्वच्छता का ध्यान रखते आए। स्वच्छता के ध्यान रखने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि इसका सीधा संबंध हमारे न सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा है बल्कि इससे हमारे देश का स्वाभिमान भी जुड़ा हुआ है। स्वाभिमान के साथ साथ हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है और हमारा सब कुछ इससे जुड़ा होगा, क्योंकि जब हम स्वच्छता का पालन करेंगे, स्वच्छता अपने आसपास रखेंगे तो गंदगी से जो बीमारियां होती हैं जैसे कि मलेरिया, हैजा, डायरिया, डिप्थीरिया, पील पाँव, डेंगू, ये सारी की सारी और भी तमाम जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं, इन सब से हम बचे रहें। और बीमार होने पर क्या होता है? बीमार होने पर एक तो हम अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ होने से हमारे कार्य बाधित होते हैं, कार्य बाधित होने से हमारी आय बाधित होती है, जिससे जिसका सीधा असर हमारे देश पर भी पड़ता है, साथ ही हमारे आर्थिक नुकसान भी होता है। हम डॉक्टर को, अस्पतालों को बड़ी धनराशि देते हैं जो कि हमारा आर्थिक नुकसान है, तो देश का नुकसान हुआ। साथ ही अगर हम गंदे वातावरण में रहेंगे तो हमारा मन भी प्रफुल्लित नहीं रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगे। इसलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता को हमें एक आंदोलन के रूप में लेना हो, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश की राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी हमारी स्वच्छता है। इसलिए वे एक बैरिस्टर होते हुए, हमारे देश के राष्ट्रपिता होते हुए भी अपने टॉयलेट तक को वे स्वयं साफ करते। तो इसलिए जब हमारे देश की इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, ऐसा हमारा अतीत है जहां पर हम नदी को भी माँ कह करके पुकारते हैं, धरती को माता कह करके पुकारते हैं, अपने वृक्षों को प्रकृति की देवी देवता मान करके पूजा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से अपने घर के कचरे को, घर के कूड़े को सड़कों पर बड़े आराम से फेंक देते हैं। हमें अपनी इन आदतों में परिवर्तन लाना। हम जब कचरे को इस तरह से सड़कों में फेंक देते हैं तो कचरा जो SWM 2026 के तहत चार भागों में विभाजित है, तो अगर हम एक ही में करके उसको फेंक देते हैं तो जो हम उसका पुनर्चक्रण करके, रिसाइकिल करके इसका यूज कर सकते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। हमें करना क्या होगा? हमें जो चार प्रकार का कचरा है, जैसे कि गीला कचरा या जैविक कचरा जिसमें हमारे रसोई का खाना हुआ, सब्जियों के छिलके हुए, फलों के छिलके हुए, चाय की पत्ती हुई, फूल हुए, ये इन सारी के सारी चीजों को हमें एक अलग हरे रंग के डिब्बे में डालना है। इसका उपयोग हम कंपोस्ट खाद बना करके या बायोगैस संयंत्रों में बेच करके बायोगैस बना करके यूज कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो कचरा होता है सूखा कचरा, जिसमें कागज हुआ, गत्ता हुआ, कांच हुआ, धातु हुए जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम वगैरह, इन सारे चीजों को हमें अलग जो है डिब्बे में रखना है और इनको हम रिसाइकिल प्लांट पर भेज करके हम दोबारा इनका यूज कर। तीसरे प्रकार का कचरा जो होता है जैसे डायफर हुआ, पट्टियां हुई, पट्टियां होने के साथ साथ ऑपरेशन वगैरह में जो तमाम तरह का जो है कचरा हुआ, या और भी हानिकारक जिनसे कि बैक्टीरिया फैल सकते हैं, इन्फेक्शन फैल सकता है, इस टाइप के कचरे को हम एक लाल रंग के डिब्बे में रखें। और लाल रंग के डिब्बे में केवल ऐसे ही खुला न रख दे, नहीं तो खुला रखेंगे तो हमारा सफाई मत्र उसको ले जाएगा तो वही बेचारा इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा फिर कचरा कौन ले जाएगा, तो उनको बाकायदे एक डिब्बे में हम पैक करके उनको हमें रखना चाहिए। और चौथे प्रकार का जो कचरा होता है, जो हानिकारक कचरा जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, सुई, हानिकारक केमिकल रसायन के कांच के शीशियां हुई, या ई कचरा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इनको अलग प्रकार के काले रंग के हम डिब्बे में रखें। और इसको जो है निस्तारण के लिए एक अलग तरह से ईपीआर व्यवस्था जो है की गई है, उसके तहत हम उनको वहां पर उसको पहुंचाएं। तो ये चार तरह के कचरों को अगर अलग अलग हम पृथककरण कर देते हैं तो हम उसका जो डंपिंग है हमारा जो है डंपिंग मटेरियल पे, वो बड़ा ढेर लगने से बच जाएगा और कुछ चीजें हमारी रिसाइकल भी हो जाएंगी। और हम कचरे के निस्तारण के लिए चार आर का हमको ध्यान रखना है। पहली चीज जो सिंगल यूज प्लास्टिक है हमें प्रयोग बिल्कुल ना कहना है, रिफ्यूज करना है आर। दूसरी क्या करना है, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स अनावश्यक कचरे को हमें नहीं पैदा करना है, प्लास्टिक की पैकेजिंग वगैरह ये सब चीजें। बाजार जाएं तो एक थैला साथ में जो है हम जूट का या कपड़े का लेके जाएं, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग पूरी तरह से हम क्या कर दें, बंद। तीसरा हम क्या करें, रिसाइकल, पुनर्चक्रण, जो प्लास्टिक यूज करें जो रिसाइकल हो सके उसका यूज करें, या जो भी ऐसे ही मटेरियल्स का यूज करें जिसका हम रिसाइकल करके यूज कर सके। हम इन बातों का ध्यान रखते हुए ठोस कचरे का जो अपशिष्ट है उसका तो प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन इस केवल ठोस कचरे के अपशिष्ट के प्रबंधन से ही हम जो है स्वच्छता नहीं रख सकते, क्योंकि तरल जो आपका अपशिष्ट होता है जैसे कि मल मूत्र और ये सारी चीजें हैं, तो इनके लिए भी प्रॉपर सीवरेज प्लांट की व्यवस्था की गई है और सीवरेज की सफाई के लिए एसटीपी प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं। साथ ही नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, इनमें जो है हम श्रद्धा के नाम पे जो पूजा वगैरह के फूल हैं या और मूर्तियां हैं, साथ ही हम अपने औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को, खतरनाक केमिकल्स को डालते हैं, इन सब चीजों को भी उसमें डालने से बचना होगा। क्योंकि अगर हमारी नदियां प्रदूषित रहेंगी, हमारे तालाब प्रदूषित रहेंगे, हमारे कुएं प्रदूषित रहेंगे, हमारे जल स्रोत प्रदूषित रहेंगे, तो कभी भी हमको स्वच्छ जल नहीं मिल पाएगा, और जब स्वच्छ जल नहीं मिल पाएगा तो हम टाइफाइड जैसी बीमारियों से और या और अन्य जो है जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, तो कभी हम स्वस्थ रह ही नहीं। साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे में जैसे मोबाइल है, आपका फ्रिज है, टीवी है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें हैं, तो इनको भी हम ई कचरों को हम ईपीआर केंद्रों पर पहुंचा करके उनको भी सही तरीके से उनका भी हमें निस्तारण करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी खराब आदत ये है घर के कचरे को बाहर जो है डाल करके उसको जला दे, तो जला देने से हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन तो इससे हमारा वायुमंडल, तो इस आदत में भी हमें सुधार लगना है। दूसरी चीज, हम लोग जो है पान गुटखा वगैरह खाते रहते हैं और अपने घरों में या दफ्तरों में कहीं भी जाते हैं वो कोने कचरे में थूक देते हैं, तो ये भी बहुत गंदा लगता है और ये आदत भी बहुत खराब है, तो इस आदत पे भी हमें लगाम लानी। अब ये काम सिर्फ अकेले हमारे उसका नहीं है, ना किसी भी सरकार के बस की बात है, इसके प्रबंधन के लिए, स्वच्छता के लिए भाई वाहन की व्यवस्था कर दी, कर्मचारी की व्यवस्था की कि आपके घर से आ रहा है सफाई मित्र, वो कचरा ले जा रहा है, फिर वहां से कचरे को अलग अलग तरीके से विभक्त करके जहाँ कंपोस्ट उसका बनना है वहां भेजा जा रहा है, एनर्जी उससे बनाई जा सकती है वहां एनर्जी के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जब तक जनता उसमें सहयोग नहीं करेगी तब तक केवल सरकार कोई भी उसके प्रयास से कुछ नहीं होगा। तो इसे हमें एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करना है, हमें अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को, साथ ही अपने मोहल्ले के लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं का जो कि घर की पूरी व्यवस्था देखती है, उनके साथ बैठ के हफ्ते में जो है सेमिनार करें, न सिर्फ सेमिनार करनी है बल्कि हमें उनके साथ श्रमदान भी करना है, क्योंकि जब वो सामूहिक रूप से श्रमदान करेंगी तो उसके साथ लगाव होगा, तो न वो स्वयं जो है वहां पे

0: गंदगी करेंगे ना किसी दूसरे को करने देंगे। तो इस तरह से हमें जो है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए तीन चार चीजों को गांठ बांध के रख लेना है कि ना तो हम स्वयं कचरा फैलाएंगे ना दूसरे को फैलाने देंगे। जो घर से कचरा निकलता है उसको हम चार भागों में अलग अलग करके हम सफाई मित्रों को देंगे। किसी भी कचरे को बाहर हम नहीं जलाएंगे। बाहर हम जो एकल सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे और प्लास्टिक की गिलास प्लेटें वगैरह जो फेंक देते हैं जिससे नालियां जाम हो जाती हैं, जल भराव, ये सब नहीं करने देंगे। और इसके लिए हम सभी को प्रेरित करेंगे, अपने विद्यालयों में सिर्फ स्वच्छता पे निबंध नहीं लिखवाएंगे, केवल महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पे या स्वच्छता पखवाड़ा वगैरह पे केवल नहीं दिखाएंगे, केवल झाड़ू लगा के उसको हम वो नहीं करेंगे, बल्कि इसको अपनी रेगुलर जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने 365 दिन की साधना में इसको ले आएंगे कि ये हमारा रोज का काम है। जब हम इसको एक आंदोलन के रूप में लेंगे, अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेंगे, तब हम स्वच्छता को सही अर्थों में ले आ पाएंगे। तभी हम अपने घर को, अपने कार्यालय को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने संस्थान को स्वच्छ रख पाएंगे। और जब ये सारा का सारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी साफ और सुंदर दिखेगा। और जब स्वच्छ, साफ और सुंदर जगह पे हम रहेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, बीमारियों से हमारा शरीर मुक्त रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और हम अच्छा सोचेंगे, हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी। जब हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी तो हमारे समाज की कार्य क्षमता बढ़ेगी, हमारे देश की कार्य क्षमता बढ़ेगी, हमारे देश की शक्ति क्षमता बढ़ेगी। तो हम सशक्त होंगे, फिर हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। इस तरह से हमारा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत की संकल्पना जो है हमारी, वो चरितार्थ रूप में आ पाएगी। तो आइए हम सब मिलकर अपने देश भारत को स्वस्थ और स्वच्छ, सुंदर, समर्थ, सशक्त बनाने के लिए स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में अपनाने का संकल्प लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था स्वच्छता की संस्कृति और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। इस विषय पर हमसे चर्चा कर रहे थे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार सैनी। दोस्तों, आज इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है उतनी ही सावधानी की जरूरत भी बढ़ा दी है। घर में बैठे बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, पढ़ाई, टिकट और सोशल मीडिया जैसी सुविधाओं ने समय और मेहनत दोनों बचाए हैं। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी के मोबाइल पर आया फर्जी संदेश, नकली लिंक, झूठा फोन कॉल या सोशल मीडिया पर बनाया गया फर्जी अकाउंट किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए आज के समय में साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सजग रहना और जल्दबाजी से बचना। दोस्तों, कई बार साइबर ठग डर या लालच उत्पन्न करके लोगों से निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे बैंक अधिकारी, कंपनी कर्मचारी या फिर किसी परिचित के नाम पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हम बिना सोचे समझे कोई लिंक ना खोलें, अपना पासवर्ड, ओटीपी या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें। कोई व्यक्ति कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, फिर भी ऐसी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, यहाँ धैर्य और संयम की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई संदेश देखकर हम घबरा जाएं या किसी ऑफर को देखकर लालच में तुरंत क्लिक कर दें तो गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके बजाय हमें कुछ पल रुककर सोचना चाहिए, क्या यह संदेश सच में सही है, क्या इसे आधिकारिक माध्यम से जांचा गया है, और यही छोटा सा ठहराव हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ सरल आदतें अपनाकर साइबर सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं। मजबूत पासवर्ड रखें, अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें, जरूरी जगहों पर 2 स्तरीय सुरक्षा अपनाएं, मोबाइल और ऐप को अपडेट रखना और अनजान लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों से सावधान रहना आपके लिए उपयोगी कदम हो सकता है। और बच्चों, और परिवार के बुजुर्गों को भी इन सावधानियों के बारे में

समझाते रहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो सके। दोस्तों, साइबर सुरक्षा केवल तकनीक का विषय नहीं है बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार का भी विषय है। इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोलकर और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके। हर क्लिक से पहले थोड़ा सोचें, हर संदेश पर तुरंत भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में शांत रहकर सही जानकारी हासिल करें। डिजिटल दुनिया में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारा ज्ञान, हमारी सतर्कता, धैर्य और हमारा संयम ही है। दोस्तों, पानी हमारे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें पानी की जरूरत न पड़ती हो। खाना बनाने से लेकर खेती, सफाई और उद्योगों तक हर जगह पानी हमारी जिंदगी का आधार है। फिर भी हम अक्सर पानी को इतनी आसानी से बहा देते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि पानी सीमित है और आने वाले समय में इसकी कमी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों, जल संचयन का मतलब सिर्फ बारिश का पानी किसी टंकी में जमा करना नहीं है। इसका मतलब है कि पानी की हर बूंद को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना। बारिश के मौसम में छतों से बहने वाले पानी को पाइप के जरिए टंकी या जमीन के अंदर पहुंचाया जा सकता है। इससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, गांवों में तालाब, पोखर या फिर छोटे जलाशयों को बचाना भी जल संचयन का बहुत अच्छा तरीका है। हम अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, नल खुला छोड़ने की आदत को हम बदल लें, जरूरत से ज्यादा पानी बिल्कुल न खर्च करें और जहां भी संभव हो इस्तेमाल किए गए पानी का दोबारा उपयोग करें। अगर घर में कोई नल टपक रहा हो तो उसे ठीक करवाना भी पानी बचाने का एक छोटा लेकिन बेहद अहम कदम है। दोस्तों, युवाओं की भूमिका इसमें सबसे खास हो सकती है। युवा सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पानी बचाने के आसान तरीकों के बारे में बता सकते हैं। अपने आसपास के तालाबों और जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण में भी युवा भाग ले सकते हैं और अपनी भागीदारी दे सकते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पानी की समस्या केवल सरकार की समस्या नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज हम पानी की एक एक बूंद की कीमत समझेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। आखिर जल है तो जीवन है, इसलिए पानी बचाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदलने का संकल्प है। आज बचाई गई हर बूंद कल किसी की जिंदगी बचाने का कारण बन सकती है। दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप जो अच्छी आदतें अपनाएंगे जैसे कि अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी, वही तय करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम युवावाणी से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रानी राजश्री को। नमस्कार।

बच्चों जय हिंद। बाल संघ कार्यक्रम में सभी बच्चों का स्वागत है और आज कार्यक्रम में मैं हूँ साजिदा दीदी। तो बच्चों आज आपसे ढेर सारी बातें होंगी, कुछ जानकारी देंगे और गीत संगीत तो होगा ही। तो बच्चों आप सब तैयार हैं प्रोग्राम सुनने के लिए? तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं कार्यक्रम बाल संघ। बच्चों एक बात बताइए कि आपको खेल कूद ज़्यादा पसंद है या फिर पढ़ाई? देखिए कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि खेल ज़्यादा पसंद है, चलिए ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। खेल कूद और पढ़ाई दोनों ही एक छात्र के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पढ़ाई जहाँ मानसिक विकास और भविष्य को मजबूत बनाती है, वहीं खेलकूद शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक ताजगी और टीम वर्क जैसी भावनाएं भी सिखाता है। तो बच्चों इन दोनों के बीच यानी पढ़ाई और खेलकूद के बीच संतुलन बनाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। कुछ उपाय करके आप तालमेल बैठा सकते हैं, जैसे कि एक सही टाइम टेबल बनाएं, उसमें पढ़ाई, खेलकूद, सोने का टाइम और दूसरे कामों के लिए भी एक टाइम बनाएं। उसमें पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें, अपने होमवर्क का टाइम रखें और फिर खेलने का टाइम शाम को 1 घंटा रखें। टाइम टेबल बनाना तो आसान है, लेकिन बच्चों उसका रोज ईमानदारी से पालन करना भी बहुत जरूरी है। बच्चों आज का काम कल पर कभी न टालें। स्कूल से जो भी होमवर्क मिला उसे उसी दिन पूरा करें। छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार 3-4 घंटे पढ़ने के बजाय हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। इस ब्रेक में आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, खेल सकते हैं और इसके अलावा अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। जैसे कि जब भी परीक्षा होने वाली हो तो खेल का टाइम कम कर दीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम दीजिए और हर सब्जेक्ट को खूब ध्यान से पढ़ें, चाहे वह हिंदी हो या फिर मैथ्स। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या फिर कोई सब्जेक्ट आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसमें ज़्यादा ध्यान दें और बार बार प्रैक्टिस करें।

बच्चों, छुट्टियों में या फिर संडे को आप खेल कूद या फिर अपनी हॉबी पर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी तरह मन लगा कर करें, मोबाइल टीवी से दूरी बनाएं ताकि कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। और बच्चों, जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो थोड़ी देर बाहर खेल लें, इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और आप दोबारा बेहतर ढंग से पढ़ सकेंगे, है ना बच्चों? चलिए, बातें और भी होंगी, उससे पहले मनोरंजन करा दिया जाए एक प्यारे से गीत से।

0: भला आँख में चोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

बच्चों, आपने गीत सुना, मनोरंजन तो हो गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। बच्चों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और वो बहुत धार्मिक महिला थीं। नियमित रूप से उपवास रखती, मंदिर जातीं और पूजा पाठ भी करती थीं और इसका असर मोहनदास जी पर भी पड़ा। बच्चों, गांधी जी का विद्यार्थी जीवन, साउथ अफ्रीका प्रवास, चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन और जीवन के अंतिम पड़ाव तक सत्य और अहिंसा का ही रास्ता अपनाया। बच्चों, उनकी शिक्षा गुजराती पाठशाला से शुरू हुई। उन्होंने संस्कृत तथा धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया और उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत लौटे और सबसे पहले राजकोट और फिर मुंबई में वकालत शुरू की। इसके बाद गांधी जी को एक मुकदमे को लेकर दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और वहां पर उन्होंने देखा कि कदम कदम पर भारतीयों का अपमान हो रहा है और खुद पर भी बीते कठोर अनुभव के आधार पर उन्होंने रंग भेद को दूर करने का संकल्प लिया और यहीं से गांधी जी के सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। गांधी जी ने कई आंदोलनों का संचालन भी किया।

0: बच्चों, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और पूरे देश में इस आंदोलन की लहर दौड़ गई। गांधी जी के अथक प्रयास के बाद 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत देश को आज़ादी मिल ही गई। बच्चों, गांधी जी का सिद्धांत था अहिंसा। उन्होंने यही संदेश दिया कि अहिंसा वीर का धर्म है, अहिंसा का अर्थ है प्रेम, दया और क्षमा। बच्चों, राजनीति के क्षेत्र में भी अहिंसा के सिद्धांत का व्यवहार उन्होंने 3 शास्त्रों के रूप में किया, जैसे सत्याग्रह असहयोग और बलिदान। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी जो इंसान को ठीक लगे उस पर पूरी निष्ठा से चलना, किसी के दबाव में झुकना नहीं है। और बच्चों, असहयोग का अर्थ है बुराई से, अन्याय से, अत्याचार से सहयोग न करें। और बलिदान का अर्थ है सच्चाई के लिए, न्याय के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। और इन्हीं तीनों हथियारों, सत्याग्रह, असहयोग और बलिदान के बल पर गांधी जी ने भारत में आंदोलन चलाया और देश को स्वतंत्र कराया। बच्चों, अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने उनका नाम जरूर सुना होगा, उनके बारे में जानते भी होंगे। और बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और बच्चों, पता है पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की जी के बारे में। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें उन्हीं की सादगी, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद। बच्चों, जब लाल बहादुर शास्त्री जी 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था और उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में और संघर्ष में बीता। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, पढ़ाई से कभी भी समझौता नहीं किया। पढ़ाई में उनकी लगन इस बात का परिचय देती है कि जब उन्हें नाव नहीं मिलती थी तब वे गंगा नदी में तैरकर पार करते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसे उन्होंने अपने नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ लिया। बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन से जुड़े, कई बार जेल भी गए। वे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के सच्चे अनुयायी थे। बच्चों, कहा जाता है कि जब पेड़ फलों से लद जाता है तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, वैसे ही विनम्रता शास्त्री जी में भी थी। यही गुण शास्त्री जी में थी। उनकी कार्यशैली, लगन और निष्ठा ने उन्हें इतना ऊपर पहुंचाया कि वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सके। बच्चों, एक बार की बात है कि शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तभी भीषण रेल दुर्घटना हुई थी और इसके लिए शास्त्री जी ने खुद को जिम्मेदार माना और रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और जब त्याग पत्र देकर वे कार्यालय से बाहर आया तो ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि मैंने अभी त्याग पत्र दिया है और यह गाड़ी तुम ले जाओ, मैं अपने घर पैदल ही चला जाऊंगा। ड्राइवर ने बहुत किया लेकिन शास्त्री जी गाड़ी में नहीं बैठे। बच्चों, देखिए बातें अभी और भी होंगी, पहले सुनिए ये संदेश।
1: सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
0: बच्चों, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है? बच्चे कहेंगे इंग्लिश, उन्हें हिंदी मुश्किल लगती है और अक्सर बच्चे मात्राओं में गलती करते हैं, छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगाते हैं, उसी तरह से छोटे उ की जगह बड़े उ की मात्रा लगाते हैं और उसी तरह से बोलते भी हैं, जो कि गलत है। बच्चों, अगर आप हिंदी का एक पेज सुलेख लिखेंगे तो इससे आपकी ये गलतियाँ दूर होंगी, आपकी लिखावट अच्छी हो जाएगी और मात्राएं भी सही होंगी। इसलिए बच्चों हिंदी का नियमित अभ्यास जरूर करें। बच्चों अब समय हो रहा है एक भेंट वार्ता का। विषय है बच्चे हैं देश का भविष्य और भेंट वार्ताकार हैं कामाक्षी सिंह जो कि शिक्षिका हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा।
2: बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं, उनका ध्यान से और प्यार से पालन पोषण किया जाना चाहिए क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ और क्या करना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी हो, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं शिक्षिका कामाक्षी सिंह जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: कामाक्षी जी। आपसे पहला प्रश्न ये है कि बच्चों की सही दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
3: अगर बात करें दिनचर्या की तो आजकल के जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, उनका सारा खेलना हर एक चीज मोबाइल से ही होती है। तो सबसे पहले तो उनको खेलने के लिए हमें बाहर भेजना चाहिए ताकि वो मोबाइल से हट करके अपने समाज के बारे में भी जान सके और उसमें घुल मिल सके, और बाहर खेलने से उनकी हेल्थ भी सही रहेगी। और साथ ही साथ उनका जो खाना पीना होता है वो ना ही उसका कोई एक फिक्स टाइम होता है ना ही वो हेल्दी खाना खाते हैं, उनको बाहर के खाने ज्यादातर पसंद आते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि उनके खाने का वक्त तय हो और साथ ही साथ वो हेल्दी खाएं। अगर बाहर का कुछ वो खाना चाहते हैं तो वो चीज हम उनको घर में ही बना करके प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो उनके लिए नुकसानदायक ना हो
2: जी।
3: और साथ ही साथ स्टडीज उनका हर एक चीज का टाइम टेबल फिक्स हो, पढ़ने का भी टाइम फिक्स हो, खेलने का भी हो, और साथ ही साथ हर एक चीज का उन्हें वक्त मिले, वो बाहर जाके घूले मिले, ये सारी चीजें होनी चाहिए
2: जी। मतलब वही कहने का मतलब है आपका कि हर चीज का एक टाइम होना चाहिए है ना। जब पढ़ रहे हैं तो उस समय अपना पढ़ें, खेल रहे हैं तो अपना एक घंटे का टाइम दिया गया है तो एक घंटा ही खेलें है ना। और खाने का टाइम जो बच्चे बहुत इधर से उधर करते हैं, अभी नहीं खाना, देर से खाना है, वो नहीं ना, हमेशा टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें
3: जी जी,
2: अपनी दिनचर्या को सही रखें बच्चे
3: जी।
2: और शुरू से ये बच्चों का पालन पोषण किस तरह हो?
3: मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत से ही बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो सब में आसानी से घुल मिल जाए और साथ ही साथ अपने से बड़ों का वो आदर सम्मान भी करें और छोटों की मदद करें। और मतलब आजकल के बच्चों की ये आदत होती है कि उन्हें जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए होती है और पेरेंट्स वो चीज उनको दे देते हैं तो इससे वो जिद्दी बन जाते हैं कि हर एक चीज चाहिए। तो उन्हें जिद्दी नहीं बनाना चाहिए, जो जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें वो दें, उन्हें वो बताएं कि ये गलत है ये सही है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए
2: जी।
3: साथ ही साथ आजकल के बच्चे संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं
2: बिल्कुल,
3: तो शुरुआत से ही उनको थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए कि हमारे कल्चर में ये होता है, ये सारी चीजें करनी चाहिए। अगर घर में कोई पूजा पाठ हो रही है तो बच्चों को भी रखना चाहिए वहां पे और उनको बताना चाहिए कि इसका ये इम्पोर्टेंस है, इसकी ये जरूरत है, ताकि वो हमारे संस्कृति के बारे में जानते रहें।
2: बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये देखिए बच्चे हमारे देश का भविष्य है ना, और कल के नागरिक हैं
3: जी।
2: हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सामान्य बचपन जीने के बजाय अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बनाए रखें, लेकिन कई जगह देखा है स्कूल ना जाकर घरों में ढाबों पर बच्चे काम करते दिख जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी?
3: ऐसे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बच्चा अगर ऐसा काम कर रहा है तो जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी और साथ ही साथ उसके माँ बाप भी शायद उस लायक नहीं होंगे कि वो उनको पढ़ाने लिखाने के बजाय ये सारे काम करवा रहे हैं, तो वो सक्षम नहीं होंगे या फिर हो सक

0: है कि उनके घर में कोई हो ही ना जो उन्हें बता सके कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसके लिए हमें अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाना चाहिए कि अब हम उनको रोक तो नहीं सकते कि आप काम मत करो, क्योंकि उनका खाना पीना उसी से जुड़ा होगा। तो हम उनकी मदद कर सकते हैं हमसे जितना हो सकता है, जैसे कि हम किताबें दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, और अगर हम किसी बच्चे को उसका एडमिशन करवा सकें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब
1: हाँ, ये
0: हम
1: तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर किसी बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसकी फीस जमा कर दी।
0: हम जितने लायक हैं उस हिसाब से हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो पढ़ लिख सके।
1: जी हाँ, अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों से घर के छोटे मोटे काम जैसे करवाने चाहिए या नहीं? जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो बस पढ़ता ही रहे, तो
0: नहीं
1: काम
0: नहीं
1: भी करवाने चाहिए?
0: हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अगर जब वो पढ़ रहा है उस वक्त हम उसको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको घर के काम नहीं करवाने चाहिए।
1: जी
0: उनको हमेशा ही छोटे छोटे घर के काम सिखाने चाहिए। कोविड में जब बाहर से कोई नहीं आ सकता था तो सारे घर के काम खुद से ही करने
1: हाँ
0: पड़ रहे थे, और
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चे भी हॉस्टल में फंसे हुए हैं, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो
1: हाँ,
0: अगर उनको ये सारे काम नहीं आएंगे तो उनके लिए ही दिक्कत होगी। तो
1: बिल्कुल
0: हमें उनसे ये सारे काम करवाने चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो उस वक्त डिस्टर्ब कर दे,
1: हाँ।
0: लेकिन पढ़ाई को छोड़ करके उसके अलावा भी उनको काम करवाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए।
1: मतलब जब खाली समय है, जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो घर के छोटे मोटे काम करवा लेने चाहिए। हो
0: हाँ
1: सकता है वो थोड़े बहुत गड़बड़ भी करें, लेकिन
0: हाँ
1: मतलब सीखेंगे कैसे फिर?
0: हाँ वही चीज, अगर वो
1: हाँ
0: सीखेंगे नहीं तो फिर आगे चल के उनके लिए दिक्कत होगी।
1: बिल्कुल। और ये देखिए, कई बच्चों को स्कूल के नाम से ही मतलब डर लगने लगता है, अच्छा स्कूल जाना है तो, या बहुत रोते हैं फिर। ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करती है? पेरेंट्स तो छोड़ गए कि भाई अब स्कूल में छोड़ दिया, बच्चा रो रहा है, तो अब तो आप लोगों की जिम्मेवारी हो जाती है, तो उस कैसे आप लोग हैंडल करते हैं?
0: ऐसे बच्चों के लिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को शुरुआत से ही ऐसा बनाना चाहिए कि वो लोगों के बीच घुले मिलें।
1: जी
0: बच्चे हमेशा क्या होता है कि वो अपने सिर्फ पेरेंट्स को पहचानते हैं, जिस वजह से उनको ये दिक्कत ज्यादा आती है। जब वो स्कूल में आते हैं तो नए चेहरे देखते हैं और उसके बाद फिर वो रोने लगते हैं, वो डरते
1: हाँ
0: हैं नए लोगों के बीच रहने के लिए। तो
1: हाँ
0: इसमें सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को ये चीज करनी चाहिए कि उनको ऐसा ना बनाए कि केवल घर में बंद करके रखें। उनको सबसे मिलना जुलना सिखाएंगे तो वो अपने आप ही थोड़ा सा उनके अंदर से डर हट जाएगा।
1: हाँ
0: दूसरी चीज ये कि कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी ऐसा करना चाहिए, हमेशा नहीं मैं
1: जी
0: बोलूंगी, कि
1: जी
0: उनको कुछ छोटा मोटा प्राइज दे करके, जैसे कि टॉफी हो गई, कभी कभी उनको ये दे करके भी हम शांत करा सकते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन कभी भी आदत नहीं डालनी चाहिए कि रोज रोज बच्चा आ रहा है रोते हुए तो उसको दे दिया
1: हाँ
0: हमने, वो शांत हो गया, तो उससे
1: हाँ
0: तो वो बिगड़ जाएगा। कि उसको डांट भी देना चाहिए, तुम्हारी हमेशा जिद पूरी नहीं होगी, इस टाइम तुमको शांत होना पड़ेगा, रोज रोज तुम ऐसे रोज रोना नहीं कर सकते हो।
1: हाँ
0: तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से उन बच्चों को शांत कराया जा सकता है। और प्यार सबसे बड़ी बात है, प्यार से,
1: जी
0: छोटे बच्चों को तो प्यार से ही हैंडल करना चाहिए। तो प्यार से तो वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, एक दो दिन लगता है लेकिन वो ठीक हो जाते हैं फिर।
1: हाँ, बहुत अच्छे से बताया आपने। और मेरा अगला प्रश्न है कि बच्चों को पढ़ाई इजी लगे उसका क्या तरीका है?
0: देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि
1: जी
0: जो बच्चों को समझ में नहीं आता वो उनको डिफिकल्ट लगता है,
1: हाँ
0: और इसका कुछ ये भी वजह रहती है कि उनकी जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, वो बहुत कमजोर होता है।
1: जी
0: वो इस वजह से जब धीरे धीरे आगे उनको बड़ी बड़ी चीजें बताई जाती हैं तो वो उनको समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए ताकि उनको समझ में आए। अगर
1: जी
0: उनको समझ में आएगा तो वो उनको आसान लगेगा, और अगर
1: हाँ
0: समझ में नहीं आएगा तो वो आसान नहीं लगेगा।
1: बिल्कुल
0: दूसरी चीज ये कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर स्कूल में बच्चा कुछ पढ़ रहा है, रोज रोज कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जाती हैं, तो घर पे जाकर अगर वो उन्हीं चीज को रिवाइज कर ले, वापस

0: पहली चीज तो उनके अंदर रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। दूसरी
1: बिल्कुल
0: चीज मदद करनी आनी चाहिए, दूसरों
1: जी,
0: की मदद करनी आनी चाहिए,
1: हाँ,
0: और उनके अंदर जेलेसी और ये सारी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनको हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज का यूज करना, ये सारी चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए।
1: हाँ
0: टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, उनको टाइम का यूज करना आना चाहिए कि
1: जी,
0: हम कैसे टाइम को यूज करें। आजकल के बच्चे टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, हमेशा उनकी
1: हाँ
0: आदत होती है,
1: हाँ
0: तो उनको टाइम का यूज पता हो, वो डिसिप्लिन में रहें, रिस्पेक्ट करें, ये सारी चीजें कुछ जरूरी होती हैं पढ़ाई को छोड़ करके।
1: जी, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर कामाक्षी मैम से बहुत ढेर सारी आज बातें हुई, बहुत अच्छी जानकारी मिली, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों, अभी आपने भेंट वार्ता सुनी। विषय था बच्चे हैं देश का भविष्य, और भेंट वार्ताकार थी कामाक्षी सिंह, जो कि शिक्षिका हैं, और भेंटकर्ता थी बबिता बत्रा।

बच्चों, आजकल बच्चों की पसंद मोबाइल बहुत रहती है। बस हर वक्त तो सोचते हैं कि मोबाइल मिल जाए। स्कूल से आए फौरन बैग एक किनारे रखें, मोबाइल लेकर के पहले थोड़ी देर खेल लेते हैं। बच्चों देखिए, मोबाइल कभी कभी तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर न रखें। और आप लोगों के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन टाइम तय कर लें, और पढ़ाई का आप ध्यान रखें। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप तब मोबाइल की मदद ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। आप उसमें अपनी रुचि के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार सीख सकते हैं। लेकिन गेम ज़्यादा देर नहीं खेलें, पहले पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चों देखिए, इसी के साथ ही बाल संघ कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो रहा है, तो अब बच्चों से विदा लेते हैं। बच्चों, जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संघ एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्य समिति आज विपणन सत्र 2027-28 बदे रबी फसलन के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी के मंजूरी दे दिलस। मंत्रिमंडल गेहूं के एमएसपी के बढ़ा के 2610 रुपया प्रति क्विंटल कह दिले हो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में एगो प्रेस वार्ता में जानकारी देने।
1: वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी को। जैसे गेहूं है तो गेहूं में तो प्रोडक्शन कॉस्ट 1264 है, लेकिन उससे डबल से ज्यादा यानी 100% से ज्यादा रखी गई है एमएसपी 2610 रुपए पे पर क्विंटल। ये सारी रेट है पर क्विंटल रेट से।

0: सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 413 रुपया प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी कैल गईल बा। वहीं मसूर के एमएसपी में 390 रुपया आ जौ के एमएसपी में 136 रुपया प्रति क्विंटल के बढ़ोतरी कैल गईल बा। केंद्र सरकार खरीफ विपणन सत्र 2026-27 बदे उत्तर प्रदेश के सतही देश के 3 राज्यन में प्रमुख दलहन आ तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद खातिर 5,547 करोड़ 99 लाख रुपया के मंजूरी देले हो। ई खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत कैल जाए। एगो रिपोर्ट।
1: प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा तय करते हुए कुल 3,992.57 करोड़ रुपए की खरीद को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरी झंडी दी गई है। इसके तहत राज्य में 3,937.70 करोड़ रुपए मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रुपए मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य बाजार भाव में गिरावट से किसानों को बचाना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 509 दिव्यांग जन के 664 सहायक उपकरण के वितरण कार्यक्रम में शामिल भेले। एह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री दिव्यांग जनन बदे सरकार के ओर से कैल जा रहल कोशिशन के बारे में जानकारी देना।
2: दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरी में अच्छे अवसर मिले, घर से सड़क तक, सड़क से परिवहन तक, परिवहन से स्कूल तक, स्कूल से कॉलेज तक और कॉलेज से रोजगार तक, ये हर जगह इनके लिए रास्ता सहज हो, इस भाव से आज हम सब कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है।
0: ऐसे पहले मुख्यमंत्री ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के 57वां और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ के 12वां पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के आखिरी दिन भइल श्रद्धांजलि सभा का अध्यक्षता कैले। ए मौका पर वहां के ब्रह्मलीन दोनों महंत जी के नमन करत उनके व्यक्तित्व आकृतित्व के बारे में चर्चा कैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र आ लगातारे प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा का 25 वर्ष पूरा कर रहा है। सेवा सुशासन के नजरिया से प्रेरित होकर सरकार 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य पौले की दिशा में लगातारे कार्य कर रही हो। समावेशी विकास आ सामाजिक सशक्तिकरण के कोशिश से लोगों के जिंदगी बदल रहा बा। एक खास श्रृंखला में आज हमने के स्वच्छ भारत मिशन के जरिए जमीनी स्तर पर हो रहल सामाजिक आ स्वास्थ्य के बारे में बदलाव के लेके जिक्र कर रहल है।
3: 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल दिया। इस पहल ने स्वच्छता को एक बुनियादी आवश्यकता बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
4: स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
3: स्वच्छता की इस नई चेतना ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है और स्वच्छता से समृद्ध के संकल्प को साकार किया है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
0: मौसम विभाग प्रदेश में फिलहाल बरखा से राहत का संकेत देले हो। विभाग के मुताबिक आवे वाला 6 अक्टूबर ले प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का संभावना बा। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।
5: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उग्र केंद्र से बोल रहे हैं। समय है स्थानीय सूचना और कार्यक्रम विवरण का।
6: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें।

0: चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026, वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आइए आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। हमारी इस सभा में चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर। शाम 7:31 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कानून की बात। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का राग मल्हार में ख्याल गायन।

रात 10 बजे शुमा रोशन होगी कार्यक्रम रसधारा से। सबरस होगा शाम 7:45 पर। पुराने गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुना जाएगा रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत सुना जाएगा रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। इसमें भेंटवार्ता आप सुनेंगे हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर केशव गौतम जो वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से होंगे। और साथ में आप आनंद लेंगे लोकगीत का। कलाकार होंगे मुन्नर यादव और साथी। ये थी जानकारी इस सभा के शीर्ष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नैना बहिन राम राम हो।
0: गुलाबो बहिन आप हो के राम राम। और बताओ का हाल चाल बा?
1: बढ़िया हाल चाल तो नहीं बा, लेकिन अब तुमसे मिल लेनी पंचायती में तो बढ़िया हो गई। अब समझ ले कि ये जो मौसम चलत बा ना नैना बहिन,
0: हाँ हाँ,
1: समझ ले कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के अगर देखा तो लगला कि बड़ी परेशानी बा, लेकिन देखा घर परिवार से बाहर निकला तो अपने पंचायती में जब जुड़ जा तो लगला कि तने सब मन आन बान हो गई बा। काहे कि ये जो समय चलत बा ना इतना मतलब संक्रमण वाला, सर्दी खांसी बुखार जुकाम लेकिन परानी में जाना परेशानी ये सब देख के ना मन बड़ी विचलित हो जाला हो।
0: बिल्कुल सही बात कह लेनी है। तो देखा जब ई संक्रमण का बात कैली है तो देखा संक्रमण में हमने लोगों के यही चाहिए कि स्वच्छता बनाए रखी जा। कहल जाला कि अपन जब घर

0: से बाहर निकलत हैं लोगन तो चल अपन ऐसे ही जैसे चल गई लेन। तो होला ना के कहल जाला कि मुहे पे मास्क लगाई ला हो और थोड़ा सा देखे जैसे सर्दी खांसी बा उसे थोड़ा सा दूरी भी बनाए के रह।
1: बिल्कुल, और देखा लेकिन बचवन हवा लेकिन गदेलन स्कूले जात हवा जहाँ चाठे छठे बचवन और जिके संक्रमण भइल बा सर्दी
0: हाँ।
1: जुकाम वो वही संक्रमित होके घरे आवत हवा। और बचपन से ही देखा अपने घरे में जोन बड़ लोगन होलन उनके
0: उनके
1: होला।
0: हो जाला।
1: लेकिन देखा इस समय ऐसा बा काहे कि देखा जोन सितंबर अक्टूबर का महीना होला या तो हर मार्च अप्रैल का जोन महीना होला इस समय ज्यादातर ये देखे के मिलेला इस संक्रमण वाला समय होला। ये हम लोग जैसे मौसम का फेर बदल जैसे होला। अभी इस समय देखा रहे रहे एकदम मौसम ठंडा हो जात बा, बरसात हुए लगत बा, रहे रहे खूब चिलचिला धूप निकल जात बा। ऐसे कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य पर ही असर पड़ेला और साथ में लेकिन और स्वास्थ्य के हम लोगन के तरीका से बिगाड़त है वो हम लोगन के हाथ में हो जात बा। जैसे अभी कचरा के बात कर ला, कचरा जैसे हम लोग इकट्ठा करीला, अब जैसे अपने गाय में तो हम लोगों कचरा ले जाके एक गड्ढा में डाल के तोप देला या तो ओके जला देला। लेकिन जहाँ देखा शहर में अपन कूड़े वाला जो बाल्टी होके कचरा रखल जाला वो कचरा कर्मी लोगन आवलन वो ओके उठा के ले जाला
0: ले जाले। हाँ।
1: वही कचरा में देखा हम लोगन कहीं कहीं देखल जाला सूखा कचरा एक अलग गीला कचरा अलग नियम ही है बा
0: हाँ हाँ।
1: कि हम लोगों कचरा के अलग अलग दो जगह रखी। लेकिन बहुत लोगों का कर एक के साथे रख के कूड़े मतलब दे वाले के दे दे वाले
0: दे दे वाले
1: तो उसे देखा ओकर जो संक्रमण होला ना ओकर जो गंदगी से जो बदबू निकला
0: हाँ हाँ।
1: वो अपने जो सफाई कर्मी लोगन होला नैना बहन वो उसे बड़ी प्रभावित होलन।
0: बिल्कुल सही बात कहले नहीं है। तो देखा सबसे पहले बात तो ये है कि हमनी लोगन की जागरूक होए के चाहिए कि सोच जोन गीला कचरा बा ओके अलग रखे सूखा अलग रखे। ओकरे साथे साथे कभी कभी क्या होला कि लोगन जोन शीशा बा चाहे घर में सुई बा चाहे हाउ ब्लेड बा ये सब जोन बा एक ही में डाल दी। हाँ
1: नहीं ओकर, ओकर देखा अब तो नया नियम भी निकल गई बा। पहले तो दो रंग का डब्बा रहत रहा
0: हाँ हाँ
1: एक थे हरियर एक थे लाल
0: ला।
1: लेकिन अब तो दो डब्बा और हो गई एक थे लाल एक थे करिया। अब समझ ले कि अब जो स्वास्थ्य के हम लोगों के देखते हुए सफाई में अब चार डब्बा के इस्तेमाल करल जात बा। जैसे लाल डब्बा में जैसे सुई हुई हो गल खतरनाक चीज हो गई
0: हाँ।
1: शीशा हो गल
0: सब
1: चीज
0: डाल के।
1: और जो करिया डब्बा बा ओमे देखा जो रासायनिक से चीज होला
0: हाँ।
1: जैसे रासायन जैसे हम लोगों के हाथ में लग जाए तो जर जाए या कहीं सफाई कर्मी छुअत हो या अलग करत हो तो उनके हाथ पे कुछ असर पड़े
0: असर पड़े
1: तो ऐसा सब चीज करिया डब्बा में डालल जाला। और देखा लाल डब्बा जोन बा उमें देखा सूखा अपन हम लोग कचरा रखल जा रहा हरियर में गिरा तो ये सब चीज हम लोग अगर ध्यान रखल जाए तो अपन सफाई कर्मी भी स्वच्छता में हम लोगों के भागीदारी हुआ स्वच्छ रखे खातिर स्वच्छ समाज स्वच्छ जीवन हम लोगों के स्वच्छता के रखे रखत हुआ तो हम लोगों के भी जिम्मेदारी बा कि उनके स्वस्थ रखा जाए।
0: बिल्कुल
1: अगर हम लोगों के निर्देश मिलत बा अगर हमके डब्बा नहीं भी मिलत बा तो अपने घर से अपन डब्बा का व्यवस्था करके
0: अलग अलग कचरा करके
1: बिल्कुल लेवल जाए ताकि उनके कूड़ा रखे में आसानी हो
0: आसानी रहे उनके स्वास्थ्य पे असर भी न पड़े। और देखा अपने जब सफाई कर्मी भैया लोगों को बात कर ली है तो देखा वो लोगों की यह सचेत करे की हमने लोगों के कि अपने हाथ में ग्लव्स पहन के काम कर रहा है। और जैसे अपन कपड़ा बा तो कपड़ा भी ओके जब पहन के जैसे सफाई के लें तो के अपन घरे से बहरे कहीं उतार के रख दा और बाद दूसरा कपड़ा पहन ला।
1: बिल्कुल तो, और पहली बात यो कि जैसे साफ सफाई करे के बाद जब घर जाते हुआ तो तुरंत स्नान करे का प्रयास करे
0: हाँ।
1: पहले साबुन से धोले फिर स्नान करे
0: स्नान
1: फिर अपने घर में जाए बचपन में जाए अपने परिवार में जाए तो ऐसे भी देखा संक्रमण रुक जाला वही खत्म हो जाला। नहीं तो अगर बहुत भैया लोगन होलन की थोड़ा सा इतना कोताही कर दे वालन अपन तुरंत हाथ गोड़ धोइए अपन परिवार में जाके उहे कपड़ा पहन के घुल मिल जालन तो वह संक्रमण अपने बचवा लोगों में भी चल जाला तो उसे बड़ी नुकसानी होला। और देखा हम लोगों के जब साफ सफाई में इतना बड़ा भागीदार अपन सफाई कर्मी भैया लोगों हुआ तो हम लोगों के भी जागरूक हुए की जरूरत बा
0: बिल्कुल
1: उनकर स्वास्थ्य सही रहे
0: सही रहे
1: हम लोगों के जिम्मेदारी हो जाला और उनका स्वास्थ्य सही रखे ए बदे हम लोगों के विशेष रूप से ध्यान रखल जाए कि अपन कूड़ा सही सही डब्बा में डाल जाए और ओके ले जाके स्वयं अपने जो सेफ्टी टैंक आवत बा जो कूड़े वाला टैंक होला उनमें डाल जाए। और जहाँ ग्रामीण हम लोग जगह है जहाँ है तो वहाँ ले जाके गड्ढा में तोप देवल जाए हरा कूड़ा जहाँ हरा सब्जी का छिलका हो ये सब जो गले वाला चीज बा ओके ले जाके अपन गड्ढा में डाल के तोप दे ताकि वो खाद बन जाए। और जो गले वाला नहीं बा जैसे प्लास्टिक हो गए ये सब चीज बा तो वो हम लोग भी एक गाय में भी एक डब्बा रखा जाए बा बड़ा बड़ा टीन में रखा जाला सफाई कर्मी आवलन हफ्ता 10 दिन में ओके साफ करके उठा के ले जाले। तो हम लोगों भी जागरूक होने की जरूरत बा कहे कि देखा अगर जैसे प्लास्टिक की बात कर ला अब भाई हम लोग प्लास्टिक देखा अगर जला दे जलावे वाला कूड़ा ही मान लो कर ला के जला के खत्म कर देनी जैसे पतई बटोर के जला देनी प्लास्टिक बा ओके जला देनी तो ओकर जो गैस बना वो कहीं ना कहीं हम लोगों के शरीर में जाके फिर हानिकारक
0: हानिकारक बने।
1: ऐसे देखा।

0: प्लास्टिक ऐसा चीज बा ना ओके जला सकेला केहू ना गला सकेला
1: गला सकेला।
0: और ना मतलब बस ये उपाय बा कि अपन उसमें कूड़ा वाले बाल्टी में डाल के अपने सफाई कर्मी भैया के दे
1: दे
0: दे।
1: दे।
0: बिल्कुल
1: तो और देखा है अपन सफाई कर्मी भैया लोगों के भी अपने से सचेत ई हो के बा अगर कौनो कारण बस जैसे कि उनके संक्रमण हो गल बा तो उनके जैसे कोई चीज शरीर में परेशानी होता तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और देखे कभी कभी का होला कि अपन जब त्वचा बा तो ऊपर खुजली होए लगल दाग धब्बे दिखाई लगल तो ओके अनदेखा कर दे वाला ले।
0: बिल्कुल और देखा ये काहे होला जैसे ये कीटाणु को जैसे हम लोगों ने बात करत है ना ये कीटाणु देखा कचरा में ही मिलेगा अब जो कचरा में जो कीटाणु बा उसे देखा टीबी हो सकला टाइफाइड हो सकेला हेपेटाइटिस बी भी हो सकेला साथ में जो चर्म रोग ऐसा बीमारी होला चर्म रोग भी उसे
1: हो सकला
0: साथ में जो आंख में इन्फेक्शन आंख में जो खुजली होना
1: हाँ, लाल हो जाना
0: ये सब चीज भी देखा एक जब हम लोग सफाई न रख जाए कूड़े के वजह से ही ये हम लोगों के शरीर में हो सकला तो ऐसे अनजान मत बने अगर ऐसा कोनो भी समस्या आवत बा तो पहले तुरंत डॉक्टर सलाह ले डॉक्टर के यहाँ जाए और प्रयास करें कि ये समस्या ही न आवे
1: समस्या ही न सावधानी बरते
0: बिल्कुल हाथ में ग्लव्स हमेशा पहने मोटा ग्लव्स जोन होला और मुंह पे मास्क का प्रयोग हमेशा करें।
1: हाँ और देखा अपन स्वास्थ्य का बात तो हो ही गई तो देखा स्वास्थ्य के साथ साथ देखा अपने खान पान पे भी ध्यान रखा बहुत जरूरी है। देखा कल जला के जब गर्मी का महीना है तो लोग काम करत रह जालन पानी नहीं पियलन लेकिन ज्यादा से ज्यादा गर्मी के महीना में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए के चाहिए ताकि पानी का कमी ना हो। और साथ साथ अपने खाने में जो है हरी सब्जी उपयोग ज्यादा करें मौसमी फल ज्यादा खाएं ताकि स्वस्थ रहें। कहल जाला कि जब शरीर स्वस्थ रहला जब कहल जाला ना हो कि इम्यूनिटी पावर जब सही रहला तो बीमारी थोड़ा कम होला
0: यही से थरिया में चार रंग खोजल जाला हाँ। एक लाल अरे एक पियर एक सफेद एक हरियर और
1: एक
0: लाल
1: हाँ।
0: देखा ये रंग ऐसा बात जेकर सेवन करे से हम लोगों के स्वास्थ्य बढ़िया रहे।
1: तो देखा जब बात कैली है जाए साग सब्जी का तो देखा वहू के उत्पादन हमने लोग सही तरीके से करी जा कहा जाला ना कि रासायनिक खाद डाल के कीटनाशक दवाई डाल के जब उत्पादन करब तो हमारे शरीर पे तो ऐसा नुकसान दायक एक बार। तो जब अभी बात भयल है कि कचड़ा का बात तो जो अपन घरे का छिलका है वो जैसे घास वास भी बागे पीछे अगर वो के भी हमने लोगों ने गड्ढे में डाल के खाद बनावल जी तो देखा अपने साग सब्जी पे डाल जी तो साग सब्जी भी बढ़िया सही रही और हम लोग का स्वास्थ्य भी सही रही
0: एकदम। आप देखा बात करत है तो आज हम लोग जब अपने पंचायती में जुटले गल तो अपन जो फोन इन कार्यक्रम बा जैसे डॉक्टर केशव मौर्य जी हम लोगों के बीच में जुट गल हम वरिष्ठ वैज्ञानिक हम भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से वो देखा सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के विषय में अपन बहुत जानकारी मतलब देते हम फरिया के हम तो कहब ना कि उनकर जानकारी चले हम लोगों सुनल जाए फिर आगे बात बात कही करल जाए।
1: चलो सुन लेवल जाए
2: पंच भैया लोग देखे हम लोग अपने कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार के हेलो किसान कार्यक्रम लेकर आईला जौने के माध्यम से जौन भी अपने किसान भाई लोगन का समस्या होला ओकर समाधान करे का प्रयास करीला और अपने किसान भाई लोगन के अपने पंच भैया लोगन के जानकारी भी हम लोग उपलब्ध कराईला। तो देखें आज हमार संपर्क हो गल बा सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केशव गौतम साहब से और आज आपसे हम लोगन जानब की सब्जियन में कैसे रोग कीट प्रबंधन हम लोगन करें। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार
2: डॉक्टर साहब आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब देखें इसमें बरसात का मौसम बा अपन किसान भाई लोग लौकी करेला नेनुआ तरोई तमाम तरह का जवान बरसात वाली सब्जी बा ओकर खेती कैले बा तो पहले हम लोगन लौकी का बात कर जाए तो लौकी में अक्सर डॉक्टर साहब ये देखल जाला कि जोन पेड़ बा ओकर बरसात के कारण पीला हो जाता तो ये काहे बदे होता।
3: हाँ बिल्कुल आपने सही बताया कि बारिश में क्या होता है कि रोग तो बाद में लगता है क्योंकि
2: जी
3: पानी
2: जी।
3: अगर आपकी मिट्टी में जल निकास की अगर व्यवस्था कम है तो पानी भरेगा उससे क्या होता है जो पौधे के आसपास के जो न्यूट्रिएंट है या जो पोषक तत्व है वो पानी से लीच हो जाते हैं और थोड़ा नीचे चले जाते हैं पौधे की रेंज में से बाहर। उससे क्या होता है जैसे कि यूरिया है या जो घुलनशील ज्यादा तो नाइट्रोजन की कमी अक्सर बारिश के मौसम में देखने को मिलती है उससे पत्ते पुराने पत्ते खास करके वो पीले होने लगते हैं।
2: जी जी
3: तो इससे इसका हम ये कर सकते हैं कि इस समय हम एनपीके का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा जड़ में बीच बीच में लग रहा है आपको कोई मौका नहीं मिला है जैसे कि इस बार बना रहे सोनभद्र में काफी बारिश है
2: जी जी
3: तो बीच बीच में हम लोग

0: सा जड़ किनारे अगर यूरिया दे दे तो उससे थोड़ा फायदा होगा
1: जी।
0: और पीलापन इसके बाद क्या होता है, जैसे ही पत्ती थोड़ी कमजोर होती है, पीली होती है, तो वहां पे रोग लगने की बड़ी आशंका होती है।
1: जी जी।
0: जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया या दूसरे अल्टरनेरिया ब्लाइट, इस तरह के रोग बड़े जल्दी आते हैं। उसके लिए भी हमें थोड़ा सा प्रिवेंटिव स्प्रे, खास करके मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये करने चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब जी, से कभी कभी देखल जाला कि पीला भेले के बाद पौधा सूख जाला और वो वही समाप्त हो जाला, तो ये काहे बदे ऐसा होला?
0: बिल्कुल, ये एक रोग है फ्यूजेरियम विल्ट, और एक और है जो नया आजकल गमी स्टेम ब्लाइट बोलते हैं इस रोग को।
1: जी,
0: और ये रोग अपने जो गंगा के ये जो इलाका है आसपास वाला, यहाँ काफी तेजी से बारिश में फैल रहा है।
1: जी जी।
0: ये रोग पहले नहीं था। इस रोग में शुरुआत क्या होता है, पत्ती में, पत्ती के किनारे से हल्के हल्के पीलापन, फिर उसके बाद काले धब्बे, और वो धीरे धीरे, जैसे अगर पानी लगातार पौधे की जड़ और उस पे लग रहा है तो आपकी जो पौधे का तना है वो हल्का हल्का काला और भूरा पड़ता है।
1: जी,
0: और
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे उसमें दरारें स्टार्ट होती है।
1: जी जी।
0: और बाद में जिसे एक गम जैसा निकलता है, जिसको लोग लाशा भी बोलते हैं, वो काफी निकलता है, और फिर उसके बाद पौधा अचानक मर जाता है।
1: डॉक्टर साहब एक फोन भी आए गल बा। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हूँ आप?
2: जी, हमारा नाम सचिन कुमार सिंह है, हम जो है जरहा बीजपुर सोनभद्र से बोल रहे हैं।
1: सचिन भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगों के साथ हुआ डॉक्टर केशव गौतम साहब, जो उनकी सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी का वरिष्ठ वैज्ञानिक हुआ। तो आपका अगर कोनो समस्या हो लौकी के फसल से, नेनुआ करेला या मिर्च से, तो अपन प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: हाँ सर, है मिर्च में जो है एक जो उसके पत्ते जो है सर,
1: जी जी,
2: गोल गोल आकार में मुड़ जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो आप ये समस्या पहले, आप तो मिर्ची की खेती कर रहे हो कई सालों से?
2: हाँ, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं मिर्ची की खेती, लेकिन इस बार सर झुर्रा रोग टाइप में लग रहा है, उसका पत्ते जो गोल गोल मुड़ जा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही है, आपने सही पकड़ा। मिर्ची में खासकर सबसे बड़ी जो व्याधि आती है वो यही है, इसको लीफ कर्ल वायरस के विषाणु से होती है, और बड़ी दिक्कत समस्या है मिर्ची में, खासकर तो इलाकों में जहाँ पे। तो आप इसका मैनेजमेंट जानना चाहते हैं कि और कुछ इसके बारे में?
2: नहीं सर, इसका कोई मेजरमेंट टाइप में कोई अगर वैसा, अगर देसी इलाज हो या कोई वैसा जो है दवा आता हो तो बताएं सर।
0: नहीं, इसका दवा देखिए, सिर्फ ये जो है विषाणु, ये फैलने के बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक हम दवा डालते हैं तब तक ये फैल चुका होता है, तो इसका दवा डालने का असर नहीं होगा। तो मेरा यूं कहना है कि अगर रोग आ रहा है तो साथ ही साथ जो जिस कारण से ये फैलता है, ज्यादातर थ्रिप्स से फैलता है मिर्ची में, और थ्रिप्स थोड़े थोड़े बहुत छोटे होते हैं और ये नीले रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप मिर्ची लगाएं शुरुआत में, तो उसकी जब नर्सरी लगाते हैं तो उसको तो पहले 15-20-25 दिन उसको नेट में रखें, तो वहां बचा लेंगे तो 40-50 दिन बच जाएगी, लेकिन उसके बाद ठीक है आपने बचा ली, तो उसके बाद खेत में जब आप ले जाएं तो मिर्ची से एक खेत में कम से कम 15-20 ब्लू स्टिकी ट्रेप, यानी नीले कलर की पॉलीथीन 20-25 अपने खेत में लगाएं। उससे क्या होगा, और उस पॉलीथीन के ऊपर आप एक कुछ भी, अब चिकना तेल, कोई भी अरंडी का तेल लगा सकते हैं, या फिर मार्केट में आता है क्रॉप गार्ड के नाम से, उसको लगा सकते हैं, जिससे क्या है आप इसको बराबर देखते रहेंगे कि आपके खेत में इनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, उससे कंट्रोल भी होगा, और फिर आप उसके अनुसार अपना स्प्रे करेंगे। कोई भी दवा का स्प्रे आप रेगुलर बार बार ना करें, एक बार छोड़ के कम से कम 1-2-3 ऐसी दवाएं रखें जिनको आप अल्टरनेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है वही कॉमन दुकानें, किसी एक एरिया में एक कॉमन दुकानदार होता है, वहीं से सब लोग किसान लाते हैं, वही दवा पूरे जगह घूमती है, तो उससे क्या होता है आसपास के इलाकों में उस जो कीट है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, मतलब सहनशीलता पैदा हो जाती है, तो वो दवा उस पर असर नहीं करती। तो इसलिए नीम ऑयल को भी बीच बीच में डालें, नीम तेल का है ना, उसका भी छिड़काव करें, और कोशिश करें कि मल्च पे लगाएं, है ना। तो अगर आप अभी प्रेजेंट में ये है कि अगर लग रहा है तो कुछ पौधे हैं तो उनको आप उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन बात के लिए ये है कि अब उसमें लग चुके रोग, तो अब हमें उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसकी शक्ति बढ़ानी है, तो इसलिए आप हर सप्ताह या हर 10 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी बोलते हैं, खासकर उनका स्प्रे करें, जरूर करें, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, आपका सल्फर

0: मोलिब्डेनम ये सब है, तो ये क्या करेंगे, पौधे की गति को, वृद्धि गति को बढ़ाएंगे और वायरस की वृद्धि गति से अधिक करेंगे, तब पौधा अपने आप रिकवर होगा। बाकी कोई दवा उसको रिकवर नहीं कर सकती, उसकी हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप अभी यही सलाह है हमारी कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे करें हर 10 दिन के अंतराल।
1: जी सर, धन्यवाद सर।
2: बिल्कुल सचिन भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कर लें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोग लौकी का बात करत ली है, तो लौकी में डॉक्टर साहब और कौन कौन ऐसा कीट रोग बा जवन लगाना?
0: अभी बारिश के मौसम में जो आपने बताया, अभी बात चल रही थी कि पौधा पत्ती में उसके थोड़ा कालापन आता है, पत्ती जलने लगती है, उसके बाद तना फटने लगता है, फिर उस तने से लाता निकलता है, फिर उसके बाद वो मरता है। तो जब वो वो रोग जरा फैलता है, जब ये जब तने में क्रैकिंग स्टार्ट होती है या तने का फटना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम एक दूसरा रोग होता है फ्यूजेरियम, जो कि मिट्टी में रहता है, तो वो उसके माध्यम से, वो जो तना फटता है उसके माध्यम से अंदर जाता है।
2: जी जी।
0: और जब ये दोनों रोग एक साथ मिल जाते हैं तो पौधे की सडन मतलब वो हो जाती है, पौधा खत्म हो जाता है।
2: जी जी, जी जी।
0: किसान के खेत में एक पौधा इधर डेली 5-5, 10-10 पौधे ऐसे खत्म होते हैं, उसे समझने के पहले ही पूरा खेत खराब हो जाता है, और उस समय अचानक उस पर दवा का भी कोई असर नहीं होता। इसलिए बचने के लिए हम यही करें कि प्रिवेंटिव स्प्रे, इस पे बहुत कम फंजीसाइड है जो इस पे असर करती है, खास करके अभी प्रेजेंट में क्लोरोथायोनिल एक फंजीसाइड है, वो इस पे अच्छा काम करती है। और इसके साथ आप इसमें टेबुकोनाजोल या ट्रिफ्लोक्सिटिबिन जो नेटिवो के नाम से आती है, इन चीजों का स्प्रे कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि बराबर बीच बीच में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इनका स्प्रे करते रहें। और ज्यादातर खेती करना है तो उसे मचान में बारिश के समय में या बांस लगा के खेती करें, जमीन में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हम अगर चढ़ा के खेती करेंगे बारिश में तो सही रहेगा।
2: डॉक्टर साहब देखें एक फोन आई गलबा। हेलो
3: जी।
2: हाँ भैया, आपन नाम बतावा, कहाँ से आप बोलता?
3: जी बड़ा, हम सत्यम यादव बोल रहे हैं बभनी से।
2: सत्यम भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगों के साथ डॉक्टर केशव गौतम साहब हम, आप सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी का वरिष्ठ वैज्ञानिक हम। आपका लौकी करेला नेनुआ पर विशेष शोध बा, मिर्च से संबंधित भी कोनो रोग हो तो आप प्रश्न करें डॉक्टर साहब से, कोई भी समस्या हो तो।
3: अच्छा अच्छा,
0: हाँ सचिन जी,
3: हेलो
0: बताइए।
3: हाँ हाँ, प्रणाम सर।
0: प्रणाम प्रणाम।
3: कह रहे हैं सर, हम लौकी का खेती किए हैं।
0: हाँ।
3: और जो हमारी लौकी है वो केवल फूल रही है, फूलने के बाद थोड़ी बड़ी होती है, उसके बाद फिर वो सड़ जा रही है।
0: अच्छा, तो आप अच्छा लौकी अभी जमीन पे है कि चढ़ा रखी है आपने?
3: नहीं, ऊपर चढ़ा करके उसको लगाए हैं।
0: पहले लौकी की बात करते हैं कि लौकी में ये फूल की समस्या आती है, खास करके बारिश के मौसम में। जब शाम को ज्यादा बारिश होती है तो जो फूल होते हैं उनके पोलन और कीड़ों की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसके कारण पलन में समस्या आती है। और जैसा कि क्या बार बार पानी ठहर जाता है कई बार, तो ज्यादा सड़ भी जाती है कलियां, तो इसलिए उससे कोई वाली बात नहीं है, टेंशन वाली। आपको बस ऐसा करना है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको बस माइक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना है कि मतलब वो हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो कंटिन्यू आपकी फ्लावरिंग रहेगी। और क्योंकि पौधे में जो कद्दू और ये सब्जियां होती है, इनमें खास करके एक अंदर एक सेंस होता है कि जब तक हमारा इस पौधे के अंदर बीज नहीं बनता, पौधा हमेशा फूल मतलब फूल खिलते रहते हैं, बशर्ते ये कि बाहर का तापमान और उसके लिए फेवरेबल हो या अनुकूल हो। अगर मान लीजिए ज्यादा गर्मी हो जाए, ज्यादा बरसात, उसको छोड़ के तो वो फलन देता रहेगा। बस आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते रहिए और आप जो सड़ने वाली समस्या है वो तो फंगस जो फफूंद नाश फफूंद से होती है, तो उसके लिए भी आप प्रिवेंटिव स्प्रे मैंकोजेब कार्बेंडाजीम या मेटालिक्जिल प्लस मैंकोजेब इनका आप स्प्रे करें, ताकि जो सड़ रहे हैं फूल आपके वो ना सड़े। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो जरूर आपके मादा जो फल है वो पड़ेंगे। और खास करके लौकी में यह भी होता है कि जो मुख्य तना होता है उसमें मादा फल थोड़े कम आते हैं, इसलिए किसान भाई वही करते हैं कि मुख्य तने को थोड़ा सा काट देते हैं, ताकि जो उसके साइड के तने हैं वो चले, फिर साइड वालों को भी एक बार और काट देते हैं, ताकि जो उसके भी साइड में जो निकलेंगे टर्शरी जो तीसरी जो निकलती है वहां मादा फूल आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी आता है। तो यह आप अपने खेत में भी कर सकते हैं, तीन चीजों को आप ध्यान में रखिए।
3: इसका हमें छिड़काव करना है वो प्रति हेक्टेयर कैसे करना है?
0: बिल्कुल कार्मेंडा जी, मैंकोजेब है या 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और हर कम से कम हर 15 दिन में अगर मौसम आपको लगे, प्रिवेंटिव स्प्रे है, अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी आ रही है तो आप इसको 7 दिन में भी रिपीट कर सकते हैं। और सेम चीज को ना करके आप कोशिश करें एक बार कार्बिंडा जी मैंकोजेब, एक बार मेटालिक जेल प्लस मैंकोजेब, या फिर एक बार सिस्टमिक कोई भी इंसेक्टिसाइड हो जैसे टेबुकोनाजोल प्लस ट्रिफ्लोक्सिस्ट्रोबिन, इसको आप कर सकते हैं। और कोई रोग आ रहा है स्पेसिफिक तो उसको रोग के हिसाब से आप वो दवा डाल सकते हैं। और
1: जी जी
0: ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जरूर करें, उससे आपकी जो ये बड़ आ रही है, जो कलियां आ रही है, ये लगातार चलती रही, ठीक है। और अभी बारिश के मौसम में हम पहले भी एडवाइस दिए किसान भाइयों को कि जो पोषक तत्व है वो बारिश के पानी के साथ पौधों की जड़ से थोड़ा दूर चले जाते हैं और खरपतवार उन्हें बहुत जल्दी ले लेता है, ताकि पौधा लेता है उसके पहले। तो हम लोग जब किसान भाई डालते हैं शुरू में, तो जैसे डीएपी और एमओपी पूरा डाल देते हैं, यूरिया आधा डाल देते हैं। तो मेरा यूँ कहना है कि बारिश के मौसम में जो भी सब्जी करे तो आधे की बजाय यूरिया सिर्फ 1/4 डालें, और फिर धीरे धीरे उसको बाद में 4 भाग में करके डालें पूरी फसल में, तो उससे पौधा को जल्दी न्यूट्रिएंट मिलता रहे।
3: तो सर इसके छिड़काव से पौधों में कोई साइड इफेक्ट
0: नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा साइड इफेक्ट। ये बस आपको डोज का ध्यान रखना है, और कि 2 से 3 ग्राम से प्रति लीटर जिससे ज्यादा ना हो। और कोई भी आप डाल रहे हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो उसमें स्टिकर का उपयोग जरूर करें, ताकि वो उसका फैलाव अच्छे से हो पत्तियों में और सब में। और खास करके रोगों के संबंधी सबसे बेस्ट ये बताएं कि कोई भी सब्जी लगे उसके आसपास जहाँ वायरस और विषाणु के रोग ज्यादा होते हैं, आसपास उसके बाजरा मक्का या ज्वार, इसकी एक बाउंड्री हो गया जिसको बोलते हैं हम कवर क्रॉप, वो जरूर लगाएं। इससे कई सारे रोग हमारे पीठ बाहर ही रुक जाते हैं अंदर खेत में आने से।
1: जी जी
0: ठीक है,
1: जी जी
0: ठीक है।
2: सत्यम यादव भैया, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन के लिए एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब हम जानल चाहब आपसे कि करैला का जौन खेती अपन किसान भैया लोग करत हुआ अपने अंचल में, तो करैला में अक्सर देखल जाला कि पीला पीला धब्बा आ जाला पत्ता पर, या कभी कभी पीला होई का एकदम उछलनी हो जाला, तो ये काहे बदे होला डॉक्टर साहब ओकर पत्ता और सूख भी जाला?
0: आजकल करेले में भी एक रोग है, एक जो छलनी जो आप बता रहे हैं वो एक कीट है।
2: जी जी
0: है ना, वो एक इल्ली है जो धीरे धीरे करेले के छिलके को भी खाती है और साथ में पत्ती को भी खाती है।
2: जी,
0: उसके लिए कोई भी आप सिस्टम में इंसेक्टिसाइड या कॉन्टेक्ट जैसे इंडोक्सकार का प्रयोग कर सकते हैं।
2: जी जी।
0: और रही बात पीले धब्बे, तो मैं किसान भाइयों को बताऊं कि आजकल एक नया वायरस आया है करेले में जिसको पोलियो वायरस भी बोलते हैं।
2: जी जी।
0: और इसका जो दिखने का लक्षण है वो बिल्कुल डाउनी मिल्यू की तरह है, यानी कि मृदा रोमिलासिता, उसमें भी पहले पत्ते पीले होते हैं, बीच बीच में एंगुलर धब्बे, मतलब देखा जाए तो वो त्रिकोण भी नहीं होंगे, चौकोर भी नहीं होंगे, इस तरह के धब्बे होते हैं पीले पीले, लेकिन उसके पत्ती के पीछे आपको थोड़ा सा जला हुआ हिस्सा या भूरा भूरा हिस्सा दिखेगा, तो वो तो है डाउनी मिल्यू फफूंद से।
2: जी,
0: लेकिन हम कुछ अभी ऐसा वायरस आ रहा है जो वो बिल्कुल बाहर से दूर से डाउनी मिल्यू की तरह दिखता है, उसके अंदर क्या होगा, पत्ती के अंदर पूरे पीले पीले धब्बे होंगे, लेकिन जो उसकी नसें होगी सारी छोटी से बड़ी वो सब हरी होगी। अगर पूरी हरी नसें हैं और पत्ती पीली हो रही है और उसके पीछे कोई दाग नहीं है, इसका मतलब वो विषाणु वाला रोग है, वायरस वाला रोग है।
2: जी जी।
0: और इसको हल्के में ना लें, ये धीरे धीरे हम पता लग रहा है कि ये थ्रिप से फैलता है और व्हाइट फ्लाई से भी, अब मेजर थ्रिप से फैलता है, अब व्हाइट फ्लाई से भी रिपोर्ट हो गया है।
2: जी।
0: तो इसके लिए प्रिवेंटिव स्प्रे जरूर करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे और कोई भी इंसेक्टिसाइड सिस्टमिक, जैसे कि जिसमें कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक दोनों हो, फिप्रोनिल, लिमिडा, क्लोरोपीड, इस तरह के आप यूज कर सकते हैं, तो इस रोग को थोड़ा पहचाने, क्योंकि अगर ये इसमें जैसे मुंह नहीं बनता, जैसे हम मिर्चे में या करेले में एक बार मुंह बन जाता है तो हमें लगता है कि विषाणु वाला रोग है।
2: जी जी।
0: लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे पलक कम हो जाती है क्योंकि पत्तियां पीली होगी अचानक।
2: जी।
0: और फोटोसिंथेसिस कम होगा, पौधे में खाना कम बनेगा, तो धीरे धीरे आपके पलक में कमी आएगी, और अचानक ये पौधे को अचानक मारता नहीं है लेकिन उसकी पलक को बहुत कम कर देता है। तो इस नए रोग की पहचान करें और इसके लिए स्प्रे करें, खास करके बीज उपचार भी जरूर करें।
2: जी जी
0: ठीक है, तो बीज उपचार बहुत जरूरी है और समय पे प्रिवेंटिव स्प्रे। और हम किसान भाई से यही कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड जो है और कल्चरल मेथड, इनको भी साथ में अपनाएं। बायोलॉजिकल जैसे कोई भी सब्जी फसल कर रहे हैं तो कम से कम येलो और ब्लू, पीले और नीले स्टिकी ट्रैप जरूर जरूर अपनाएं।
2: जी जी,
0: आपकी खेती में रोकथाम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक मीटर का काम करेंगे जो आपको बताएंगे कि आपके

0: खेत में कौन कौन विजिट कर रहा है आपके पीछे से, तो आपको ये पता लगेगा, उसमें वो चिपक जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंसेक्ट आ रहे हैं। और किसान भाई आजकल कई सारे ऐप ऐसे आ गए हैं जिनको आप उन कीड़ों का फोटो खींच लें तो आपको बता देंगे कि क्या क्या रोग फैलाते हैं और इनकी कितनी क्या योगदान है इनका बीमारी फैलाने में, तो उनके हिसाब से हम उनका उपचार भी कर सकते हैं। तो ये जरूर लगाएं। और नीम ऑयल का बायोपेस्टिसाइड है, जो क्योंकि हम रेगुलर इनकी चुड़ाई करते हैं, मंडी ले जाते हैं, कई सारी ऐसी इंसेक्टिसाइड भी है जिनका रेसिड्यू, जिनको बड़े लंबे तक उस समय तक फलों पर उनका असर रहता है और वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बीच बीच में कोई भी यार इंसेक्टिसाइड के बीच में या दो इंसेक्टिसाइड के बीच में नीम ऑयल 10,000 ppm का आप जरूर स्प्रे करें, जिस जिसके साथ वो घुल जाता है। आप एक घुलन का टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी दवा आप मिक्स करते हैं दुकानदार कहता है, तो कई बार उसको आप अपने घर पे एक जार टेस्ट जरूर करें।
1: जी जी,
0: क्योंकि क्या होता है किसान भाई दवाई देते हैं, वो मिला देता है, टंकी होती है कलर वाली, उसका अंदर दिखता नहीं है, और कई सारी दवाई मिला के करते हैं किसान भाई और स्प्रे कर देते हैं, बाद में उनको ये नहीं पता रहता क्या हो गया। क्योंकि अंदर जैसे आप दूध में दही मिला देंगे या कहीं चीज तेल मिला देंगे तो वो मिलेगा नहीं। इसी तरह कई दवाइयां होती है, कोई ईसी फॉर्मुलेशन की होती है, कोई एससी की होती है। तो घर पे कोई भी दवा आप मिला रहे हैं तो पहले एक जार टेस्ट करें, कांच का गिलास लें, उसमें एक एक करके सबको मिलाएं, थोड़ी देर उसको 5 मिनट छोड़ें। आप ये देखेंगे कि अगर उसका कंटेंट नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब घुलनशील नहीं है, इसको स्प्रे ना करें। क्योंकि आपने टंकी में घोल दी, वो घुल गई, 5 मिनट बाद देखेंगे टंकी के अंदर पूरा मटेरियल नीचे बैठ जाता है और आप केवल पानी पानी छिड़क के आ जाते हैं पूरे खेत में।
1: जी जी।
0: फिर आप सोचते हैं कि कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कोई भी दवा अगर आप मिक्स कर रहे हैं बिना वैज्ञानिक सलाह के, तो उसे एक बार घर पे अपने परख लें, तभी उसको करें, और फिर उसको कहीं कागज में लिख लें ताकि भविष्य में आप उसको ठीक है कर सकते हैं। और जब भी कोई दवा मिला रहे हैं तो उसका जो दिया हुआ डोज है उसे थोड़ा कम मिला है, कई बार वो अपना टॉक्सिक प्रभाव भी दिखा देती है।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो उससे टॉक्सिक भी हम पता नहीं लगा पाते किसान भाई कि ये दवा से क्या हुआ रिएक्शन या बाद क्या हुआ।
1: जी
0: ठीक है,
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब। चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के का सहजल चाहिए हैं अपने हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से?
0: मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि पूरा केमिकल पेस्टिसाइड पे ना निर्भर हो।
1: जी,
0: हम बीमारी का इंतजार करके इलाज पूछे उससे अच्छा है, क्योंकि आप हर साल इसकी खेती करते हैं।
1: जी,
0: आप शुरू से ही अपनी खेती का एक कैलेंडर बनाए, बीज उपचार उसमें मुख्य, मल्च का उपयोग, आप अगर मान लीजिए ड्रिप की खेती नहीं कर रहे तो भी मल्च कर रहे हैं, क्योंकि मल्च का काम पानी बचाने के साथ साथ खाद और खरपतवार, जो खरीफ के मौसम में बहुत अधिक खर्चा होता है किसान भाइयों का खरपतवार,
1: जी, जी, जी।
0: तो उस पे मल्च का उपयोग करने से खरपतवार के साथ साथ जो ये रस चूसने वाले कीड़े हैं ये भी उससे दूर भागते हैं, इसका उपयोग करें, इसी की ट्रैप का उपयोग करें। आपके आसपास खेत के आप कवर क्रॉप लगाएं, जैसे मक्का, सोरगम, मक्का, बाजरा, ये सब लगाएं, तो ये कुछ आप धीरे धीरे नए नए प्रयोग अपने करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी दवाई से डिपेंडेंसी कम हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज रेजिस्टेंट किस्में, जैसे करेले की आप खेती कर रहे हैं तो हमारे संस्थान ने वायरस के प्रति एक किस्म हाइब्रिड निकाला है, काशी अर्पिता।
1: जी जी।
0: और लोकी में भी हम काम कर रहे हैं कि जो आप हमने अब चर्चा करी गमी स्टेम ब्लाइट, एक बीमारी जिसमें लाटा निकल, उसके प्रति भी हम बना रहे हैं, तो वो वैरायटी अब हम उपलब्ध करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए वो रिलीज हो गई है। तो जो किसान भाई जैसे करेले की विषाणु रहित खेती करना चाहते हैं जिसमें दवा कम लगे, जहां आप 6 से 7 स्प्रे कर रहे हैं वहां आपका 2 स्प्रे में भी काम हो जाए और अच्छी वो कांटेदार वैरायटी, तो ऐसी वैरायटीज का उपयोग करें और अपने खेत में लगाएं और अधिक उपज।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम से जुड़ना और इतना बढ़िया जानकारी अपने पंच भैया लोगन के, किसान भाई लोगन के दे लें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: नैना बहन,
2: हाँ गुलाब बहन,
1: इतना बढ़िया अपन जानकारी हम लोगों ने सुनल गए। सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन डॉक्टर केशव गौतम, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से, और देखा फरिया फरिया के जानकारी ले लन मुनई भैया देवल जी, दोनों जनिक धन्यवाद।

0: और इतना बढ़िया पुरहर जानकारी और हम लोगों के देवना, और देखा यही बीच में हमारे हाथी में भी एक पांती आ चुकल बा मधुपुर से। अगर आप कहें तो अपने पंच भैरव के भी बांच के बता दें।
1: बिल्कुल बताऊंगा।
0: देखे लाल वाला आलू 1100 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 800 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज देखे 5000 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 4000 है, नेनुआ देखे 2200 रुपए प्रति क्विंटल, कोहड़ा 1500 है, कुनरू 2000 है, लंबा बैगन 2500 रुपए प्रति क्विंटल, गोल बैगन 4000 है, परवल 7500, लौकी 2500, करेला 3200 और भिंडी देखे 1800, घोड़ा 3000, मूली देखे 4000 है, लहसुन 10000 रुपए प्रति क्विंटल, धनिया 12000 रुपए प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3500, 3500 यानी, अदरक भी 12000 रुपए प्रति क्विंटल है, सूरन 4000 है, पालक 4500 और गाजर देखे 3000 है, खीरा 5000 रुपए प्रति क्विंटल, खेक्सा जो बाहरी वाला होला 5000 रुपया क्विंटल, देसी खेक्सा देखे 12000 रुपए प्रति क्विंटल, मकई देखे 1500 है, अरुई 3000 रुपए प्रति क्विंटल, पपीता 2500 है और रही बार फूल गोभी के बात, सैकड़ा में बात 3000 रुपया सैकड़ा फूल गोभी,
1: अच्छा
0: 2500 रुपया पत्ता गोभी सैकड़ा और 500 रुपया सैकड़ा नींबू बा। तो पुलवासी देव भैया के देवर जय बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुपुर से अपन प्रति क्विंटल में देहना बाजार भाव और बेकरे साथे साथे हम तो कहना की हम लोगों ऐसे ही धन्यवाद न देवल जाए एक थे मन फेर के माध्यम से। तो मुन्नर यादव अंकल संघाती एक थे स्वच्छता गीत सुनाओ था, चलो सुन ले
1: चलो सुन ले जाए।

0: ना वही
1: हाँ गुलाब
0: यही गीत के साथ अपन हम लोगों ने अपन पंचायती से मिटल जाए और एक संदेश के साथ कि बच्चों लोगों हरियर सब्जी खाएं और अपन कुपोषण दूर कराए अपने यही बात के साथ अपन पंचायती चलन समेटल सरपंचन के
1: राम राम
0: राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुंडाराज का ये गीत। गीत लिखा था राहत इंदौरी ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने।
1: सुनो सुनो सुनो गांव।

प्रवीण भारद्वाज के लिखे गीत को आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। संगीत दिया था डब्बू मलिक ने और फिल्म थी हम तुम्हारे हैं सनम।

0: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। इसमें आइए सुनते हैं डॉक्टर राहुल सिंह से साजिदा बेगम की भेंटवार्ता। विषय है ज्वाइंडिस, कारण, लक्षण और बचाव।
1: एक गंभीर बीमारी है, कहने को तो यह सामान्य बीमारी है, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो चलिए बहनों, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल सिंह जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में। तो डॉक्टर राहुल सिंह जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि पीलिया क्या है?
2: जी पीलिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह लीवर और पित्त की थैली से बीमारी से जुड़ा हुआ सिम्टम है, जिसमें हमारे शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है
1: जी।
2: उसके वजह से ये बिलीरुबिन हमारे आंखों के पीछे जो स्क्लेरा सफेद पार्ट है उसमें, स्किन में, नाखून के नीचे और पेशाब में बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें शरीर पीला दिखता है
1: जी,
2: जिसे कि हम पीलिया बोलते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, पीलिया क्यों होता है, इसका कारण क्या है?
2: पीलिया के मेनली तीन कारण, मुख्य रूप से तीन कारण हैं
1: जी।
2: एक जो प्री हिपेटिक, जिसमें कि समस्या लीवर से पहले होती है
1: जी,
2: जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, इन सब की वजह से पीलिया होता है, जिसमें शरीर में हमारे बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। दूसरा है हिपेटिक
1: जी,
2: हिपेटिक कारण। हिपेटिक कारण का मतलब कि जिसमें खुद लीवर के अंदर में समस्या होती है
1: जी।
2: तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई शराब का ज्यादा सेवन कर रहा है, उसके वजह से लीवर में दिक्कत हो, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया उसके वजह से हो
1: जी,
2: या लीवर में कोई और बीमारी हो जाए, फैटी लीवर हो जाए
1: जी,
2: तो एक ये हो गया हिपेटिक कारण। तीसरा जो पीलिया का कारण है वो पोस्ट हिपेटिक होता है, जिसमें कि हमारे पित्त की थैली में दिक्कत होती है, उसमें

0: में, जैसे पित्त की थैली में पथरी हो गया, पित्त की थैली का कैंसर हो गया, पैंक्रियाज का कैंसर हो गया, ये सब में समस्या रहती है।
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने में आता है कि नवजात शिशुओं को भी पीलिया हो जाता है, तो इसका क्या कारण है?
0: नवजात शिशुओं में जो है लीवर, मतलब कि सामान्य आदमी से कम डेवलप होता है स्टार्टिंग में। छोटे बच्चे में जो लीवर का मुख्य विकास है वो पूरी तरह से विकसित हुआ लीवर नहीं रहता है,
1: क्योंकि बिल्कुल नवजात होते हैं,
0: बिल्कुल नवजात रहते हैं। तो इस कारण से बिलीरुबिन जो एक्सक्रीशन होता है वो सही से प्रॉपर नहीं हो पाता है छोटे बच्चों में। इसके वजह से उनके रक्त में जो बिलीरुबिन नामक पिगमेंट है, जो पीले कलर का होता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है, जिसके वजह से बच्चों में पीलिया होता है।
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, पीलिया रोग किन किन लोगों को और हो सकता है नवजात शिशुओं के अलावा?
0: पीलिया किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, जो लोग और किसी नशे का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि आजकल युवाओं में बहुत सामान्य है कि वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें नशे के इंजेक्शन लगाने की वजह से एक ही इंजेक्शन वो आपस में शेयर करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी सी का इन्फेक्शन ये सब फैलने का चांसेस ज्यादा रहता है, जिसके वजह से ये लोग मतलब ज्यादा रिस्क में रहते हैं पीलिया होने के। तीसरा, जो लोग बहुत लंबे समय से कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं कि हमारे पास जो टीवी के मरीज आते हैं उनमें पीलिया होने का ज्यादा कारण रहता है, खतरा रहता है, क्योंकि दवाई के कारण, क्योंकि कुछ कुछ दवाइयां होती हैं जो हमारे लीवर पे ज्यादा इफेक्ट कर, और जो महिलाएं हो गई जैसे कि उनके पित्त की थैली में कोई दिक्कत है तो उनको पीलिया होने का समस्या रहता है। और जो लोग बूढ़े ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके शरीर में होने का रहता है, जैसे पित्त की थैली में कैंसर हो गया या उनका लीवर भी कमजोर हो जाता है एज के साथ, मोटापा जिनको ज्यादा है, जिसके वजह से जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, तो उसमें आजकल एक ये कॉमन बहुत हो रहा है कि इंडिया जो पहले क्या होता था समस्या कि जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते थे उन्ही को ज्यादा फैटी एल्कोहलिक लीवर डिजीज ये सब समस्या होने का चांसेस रहता था। आजकल हमारे खान पान जीवन शैली में इतना परिवर्तन आ गया है कि फैट फैटी लीवर ये सब हमारे नॉर्मल इंसान के शरीर में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग शारीरिक मेहनत कम कर दिए हैं और खान पान में हम कोई परहेज नहीं रखते,
1: बिल्कुल
0: फैटी फूड खाते हैं।
1: हाँ डॉक्टर साहब, इसमें तो सबसे बढ़ के जो खान पान में बदलाव हुआ है वो सबसे ज्यादा बदलाव देखिए, लोगों का झुकाव फास्ट फूड की तरफ हो गया,
0: और पहले के टाइम में क्या था कि हम जो चीजें बाहर खाते थे वो आजकल हम मैगी पास्ता मोमो सब कुछ अपने घर में अवेलेबल है, तो हमको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। तो पहले लगता था कि अरे महीने में एक ही दिन हम बाहर जाते थे, साल में एक दो दिन खाते थे, आज जो चीज हम महीने में बाहर जाके एक बार खाते थे उसको आज हम घर में हर टाइम तीन टाइम बना के खा रहे हैं। तो आप किसी से पूछोगे कि बाहर का खाना खाते हो, बोलेगा नहीं, लेकिन तो घर में तीन टाइम वही चीज पूरी बना के खाएंगे। हम लोग जब छोटे बच्चे थे हमारे गाँव मतलब गाँव में दादी लोग जब मेहमान आते थे कोई आता था तभी पूरी ये सब बनता था। आज हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे मतलब छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल बिना पूरी पराठा के जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए खान पान में जीवन शैली में बहुत बदलाव है। पहले बच्चे खेलने जाते थे, आजकल वो भी नहीं खेलने जाते हैं, तो उसका एक ये महामारी का रूप ले रहा है फैट लीवर डिजीज आने वाले टाइम में।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि पीलिया रोग किन किन लोगों को हो सकता है, अब बताइए कि पीलिया कितनी तरह का होता है?
0: पीलिया तीन तरह का होता है, एक प्री हिपेटिक जिसमें कि जो समस्या है शरीर में वो लीवर से पहले की है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि उसमें बिलीरुबिन का लेवल लीवर से पहले ही ज्यादा बढ़ने लगता है। उसमें लीवर नॉर्मल होता है लेकिन तो क्या होता है जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो टूटने लगती हैं, तो उसके वजह से लीवर में बढ़ने लगता है बिलीरुबिन का, जैसे कि मलेरिया के केस में होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है, जो हमारे कुछ एनीमिया होती है जिसमें शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो जैसे किसी की आरबीसी की टूटने की अवधि 120 दिन में, वो 120 दिन उनका लाइफ स्पैन रहता है, तो किसी किसी में वो 60 दिन में ही टूटने लगे, जल्दी टूटने लगे, तो उनके क्या टूटने का संख्या ज्यादा हो गया तो बिलीरुबिन का लेवल ऑटोमेटिक हमारे शरीर में बढ़ जाता है।
1: जी
0: जी। और उसके बाद दूसरा हो गया लीवर का, जो कि हिपेटिक जॉन्डिस पीलिया उसको बोलते हैं, तो उसमें हो गया हमारे लीवर के अंदर समस्या होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी सी ए और ई, और उसके बाद हो गया कोई ड्रग के वजह से हमारे लीवर को इफेक्ट हो रहा है, या कोई शराब, ज्यादा शराब के वजह से हो रहा है, या कोई और लीवर की उसमें बीमारी हो गई, जैसे किसी किसी को लीवर का कैंसर हो गया
1: जी,
0: तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से मिलेंगे आप तो ठीक रहेगा। तीसरा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसको

0: हम बोलते हैं, जिसमें कि पित्त की थैली से में समस्या रहती है,
1: जी
0: उसमें लीवर नॉर्मल रहता है, लीवर में कोई
1: जी
0: परेशानी नहीं।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: तो जो लीवर से बिलीरुबिन बन रहा है वो आगे पास ही नहीं हो पाता,
1: जी
0: क्यों?
1: जी
0: क्योंकि जो जहां से लीवर को पास होना है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट हो गई,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है,
1: जी
0: उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। जैसे पित्त की थैली में
1: जी
0: पथरी हो गया, कैंसर हो गया,
1: जी
0: पैनक्रियाज
1: जी
0: का कैंसर हो गया, ये सब में।
1: तो डॉक्टर साहब, पीलिया होने के लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि बस इनको पीलिया हो गया है?
0: पीलिया का तो लक्षण ये है कि हम लोग को दिखेगा, मतलब अगर थोड़ा लेवल बिलीरुबिन का लेवल कम रहेगा, जिसको
1: जी जी
0: लेटेंट जॉन्डिस बोलते हैं हम अपने टर्म में, मेडिकल
1: जी
0: टर्म
1: जी
0: में, तो आम जनमानस में वो उसको समझ नहीं पाएंगे पीलिया, जब टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा।
1: जी जी
0: लेकिन तो ऐसे अगर ज़्यादा पीलिया है शरीर में बिलीरुबिन का लेवल, तो आपको आपके पेशाब में दिखेगा,
1: जी
0: सामने वाला आदमी है उसको आपकी आंखें पीली पीली दिखेंगी,
1: जी जी
0: चेहरे का रंग हल्का थोड़ा पीला दिखेगा,
1: जी
0: जो मल है शरीर से निकलता है वो मटमैले कलर का रहेगा,
1: जी
0: और नाखून है उसके नीचे पीला पीलापन दिखेगा आपको।
1: जी जी अक्सर लोग देखते हैं कि अच्छा
0: और
1: नाखून दिखाओ अपना। जी
0: जी और शरीर में उल्टी का समस्या होगा, भूख कम लगेगा,
1: जी
0: ये
1: जी
0: सब मरीज को परेशानी हो सकती
1: तो
0: है,
1: ये
0: बुखार आ
1: सारे,
0: सक
1: हाँ
0: जी
1: ये
0: बुखार आ
1: सारे
0: सकता
1: लक्षण
0: है
1: हैं।
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, क्या पीलिया की वजह से दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी होता है?
0: जी पीलिया के वजह से दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जब पीलिया हमारे शरीर में हो गया तो उस टाइम हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो
1: जी
0: उस टाइम मरीज को दूसरी बीमारियों का होने का खतरा रहता है।
1: जी
0: तीसरा, अगर हम पीलिया को सही नहीं कराएंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी जी
0: तो अगर हमको लीवर का दिक्कत है मरीज को, और उसको हम सही से इलाज नहीं कराएंगे,
1: जी
0: झाड़ फूक का हेल्प लेंगे, सहायता लेंगे,
1: जी जी
0: तो उसको बीमारी को बढ़ने का चांस रहता है। तो अगर
1: जी
0: बीमारी का हम सही से इलाज नहीं कराएंगे तो उसको एक टर्म होता है एक्यूट लीवर फेल्योर, जिसको
1: जी
0: कि
1: जी
0: बोलते हैं, तो वो उसमें जा सकता है। या अगर हम सही से इलाज नहीं कराएंगे तो जो बीमारी आपको अभी सही होने वाली थी वो क्रॉनिक लीवर फेल डिजीज में भी चेंज हो सकता है।
1: जी जी
0: और उसके बाद कुछ कुछ मरीजों में जिनको कि हेपेटाइटिस बी सी है, अगर
1: जी
0: उनको सही से इलाज नहीं किया जाए तो उनको लीवर कैंसर होने का चांस रहता है,
1: जी
0: बहुत कम चांस ही रहता है, लेकिन तो हो सकता है वो, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जिसमें कि कोई बीमारी नहीं था और
1: जी
0: जिसको एक बार पीलिया हुआ है किसी भी कारण से, उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा, जो लोग शराब ये सब का सेवन करेंगे उनमें ज़्यादा रहेगा।
1: अच्छे से
0: और
1: तो पीलिया की वजह से, जैसे पीलिया हुआ है तो
0: जी,
1: कौन सी और बीमारियां हो सकती हैं?
0: पीलिया के वजह से और सी बीमारियां हो सकती हैं, यही
1: जी
0: जैसे कि आपको कैंसर हो सकता है
1: जी
0: बाद
1: जी
0: में, जैसे आपके पित्त की थैली में पथरी है,
1: जी
0: पित्त की थैली में इन्फेक्शन है,
1: जी
0: उसको आप नहीं सही कराओगे तो
1: जी
0: पित्त की थैली का कैंसर हो सकता है।
1: जी जी
0: और लीवर में बीमारी है, लीवर का सही नहीं, जैसे हेपेटाइटिस बी सी का है कि क्रॉन, इनमें अगर इन्फेक्शन है तो बहुत बार अपने आप सेल्फ लिमिटिंग रहता है, अपने से वो इन्फेक्शन सही हो जाता है,
1: जी
0: बहुत बार होता है कि हमको उसका इलाज करना पड़ता है,
1: जी
0: तो अगर
1: जी
0: हम इलाज करा लेंगे तो वो सही रहेगा।
1: जी
0: और उसके बाद बाकी का है, जैसे कि लीवर में कोई दिक्कत है उसको हम इलाज नहीं करा रहे हैं तो दूसरा इन्फेक्शंस का चांस हमको ज्यादा रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी,
1: तो डॉक्टर साहब, पीलिया का इलाज किस तरह से होता है?
0: पीलिया का इलाज सामान्य तौर पे ये नॉर्मल खान पान और परहेज से हो सकता है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: ज्यादातर लोगों में अपने आप पीलिया अपने से सही हो जाता है, सिर्फ खान पान और परहेज से,
1: जी
0: और कुछ जरूरत पड़े तो थोड़ी हल्की दवाओं से।
1: जी जी
0: जैसे खान पान में परहेज करना है, उस टाइम पे ज्यादा शारीरिक काम नहीं करना है,
1: जी
0: और उसके बाद अगर कुछ दिक्कत है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाना है, वहाँ पे जो आपके डॉक्टर रहेंगे वो जो जरूरी जांचें लगेंगी वो कराएंगे
1: जी
0: और आपको उचित सलाह देंगे।
1: जी
0: खान पान में आपको क्या करना है कि ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खाना है, शराब का सेवन नहीं करना है,
1: जी
0: नशा नहीं करना है,
1: जी
0: उसके बाद दूध का जो मलाई है
1: जी
0: ये
1: जी
0: सब वाला, पनीर है ये सब नहीं खाना है, हल्का दूध ये सब ले सकते हैं आप। उसके बाद जो मांस मछली ये सब है, अंडा है, उस टाइम पे अवॉइड करना है,
1: जी जी
0: और तला भुना चीज नहीं खाना है।
1: जी
0: हरी साग सब्जियां ये सब उस टाइम पे खाना है जब आपको पीलिया हो तो खाना है। बहुत बार
1: अच्छा
0: देखा गया है कि हमारे यहाँ इस रीजन में जब पीलिया होता है तो मरीज को हल्दी देना, एकदम दाल में बिल्कुल
1: हाँ
0: नहीं
1: हाँ बिल्कुल
0: डालेंगे,
1: बिल्कुल
0: सब्जी में
1: हम
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तो हल्दी ज्यादा डालेंगे तो वो नुकसान कर सकता है, हमारे जो हल्दी का मेटाबॉलिज्म है वो भी लीवर में ही होता है, तो अगर हम ज्यादा डालेंगे तो वो नुकसान कर सकता है, लेकिन हल्का मात्रा में हल्दी का सेवन करना इसके लिए लाभदायक ही रहेगा।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने पीलिया के बारे में बताया।

0: दिया, उनके लक्षण बता दिए और इलाज भी आपने बता दिया। तो अब बताइए कि पीलिया ना हो, हम सब स्वस्थ रहें, इससे बचे रहें, इसके लिए हम लोग क्या करें?
1: इसके लिए सबसे तो जरूरी है, जो
0: जी
1: आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन कराना जरूरी है।
0: जी
1: हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराना जरूरी है छोटे बच्चों में।
0: जी
1: उसके बाद अगर जो युवा लोग हैं
0: जी
1: उनको शराब के सेवन से बचना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको डॉक्टर को दिखा के इलाज कराना, पानी पिए तो
0: हाँ
1: उबाल के
0: हाँ
1: पिए
0: और घर का बना खाना
1: और
0: खाएं।
1: सब्जियां जो हैं अच्छे से धुल के खाएं।
0: जी बिल्कुल, ये सारी बातें हो गई और डॉक्टर साहब आपने अच्छी बात बताई और इससे हम सब स्वस्थ भी रहेंगे। तो
1: जी
0: डॉक्टर साहब आज आप स्टूडियो में आए, पीलिया के बारे में ढेर सारी बातें बताई, जानकारियां दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य के अंतर्गत, ज्वाइंडिस कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर राहुल सिंह से साजिदा बेगम की भेंटवार्ता। ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का उभरा केंद्र है 102.7 FM पर। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्नदाता की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने भरा पर्चा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुसुम के लिए एमएसपी में सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए एमएसपी 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
1: कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए।
0: केंद्रीय कैबिनेट के रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी के फैसले पर जौनपुर के किसान राजेश ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा।
2: लगभग सभी प्रकार की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों के जीवन स्तर और कृषि का जो विकास होगा।

0: उससे भारत का गांव, गरीब और किसान लाभान्वित हो। मैं मोदी सरकार और उनके समस्त मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ।
1: मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का ट्रांसमिशन संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और लाभकारी मूल्य मिलेगा। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में प्रमुख दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद के लिए 5,547 करोड़ 99 लाख रुपए को मंजूरी दी है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,992 करोड़ 57 लाख रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 3,937 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन अरहर और 54 करोड़ 87 लाख रुपए मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग शामिल है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 509 दिव्यांगजन को 664 सहायक उपकरण वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को मजबूत किया है।
3: 17 लाख से अधिक जो दिव्यांगजन है उनकी डिजिटल पहचान को मजबूत करने का कार्य किया है और इन्हें उनका कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हमारा प्रयास है कि 2026-27 को इस जो वर्ष है, इस वर्ष में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगजनों को पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम के लिए शिविर लग सके।
1: प्रदेश के 9 केंद्रों पर आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में वर्षा के कारण बदलाव किया गया है। पहली अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार जिन 9 केंद्रों पर परीक्षा की तारीख बदली गई है उनमें 12वीं वाहिनी पीएससी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली, 9वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर, 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएससी आजमगढ़ और 39वीं वाहिनी पीएससी मिर्जापुर शामिल है। पहली अक्टूबर के स्थान पर 8 अक्टूबर को परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने आज लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
5: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया

0: गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के हर युवा को शिक्षा का समान अवसर देना है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को शिक्षा के समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए।
0: सीतापुर के ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति व्यवहारिक कौशल आधारित और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने वाली है।
2: इस नई शिक्षा नीति से कौशल विकास के कार्यक्रमों में तकनीक का प्रयोग और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर।
3: बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी में घाघरा और बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 बाढ़ चौकियां और 16 राहत शिविर स्थापित किए हैं। वहीं अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
4: जहाँ पर ऐसा था कि नदी और बंधे के बीच में लोग बसे हुए हैं, तो बंधे पर ले जाया गया है। बाढ़ शरणालय स्थल जो है ले जाया गया, वहाँ उनकी सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही है। लगातार हम लोग वॉच कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत अभी नहीं आई है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्नदाता की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने भरा पर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपको आज सुनवाने जा रहे हैं महिलाओं के अधिकार, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं अवकाश प्राप्त न्यायाधीश विजय वर्मा और भेंट करता है अतिश श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है विवाह विच्छेद एवं महिलाओं के अधिकार। श्रोताओं, ये बात सभी जानते हैं कि भारत में सनातन धर्म में पाणी ग्रहण संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है, लेकिन विवाह के पश्चात कुछ अनबन हो, कुछ ऐसे मुद्दे या मौके बन जाएं कि विवाह विच्छेद की नौबत आ जाए, इसी पर अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है विजय वर्मा जी को। आप अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रहे हैं और इस न्याय व्यवस्था से, न्याय के ज्ञान से, न्याय के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो शिक्षा प्रदान की जाती है अन्य लोगों को, उसमें एक लंबा अनुभव है। वर्मा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर। श्रीवास्तव साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे विषय का चुनाव किया है जहां पे महिलाओं को अपने अधिकार को जानने की अत्यंत आवश्यकता है, और इससे निश्चित रूप से महिलाओं को जानकारी प्राप्त करके वे लाभान्वित होंगी। तो मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगा कि भारत में महिलाओं की एक सामाजिक परिस्थिति रही है जहां पर पूर्व में उनको बहुत अधिकार नहीं होते थे, संविधान में उनको फिर समानता का अधिकार प्राप्त हुआ और उसके बाद से लगातार कानून महिलाओं के हित के लिए उनको अधिकार प्रदान करने के लिए बनाए गए। वास्तविकता में यह है कि कानून होते हुए भी महिलाओं को उसकी जानकारी न होने से या उनको इस बात का ज्ञान न होने से कि अगर वो है भी अधिकार होने तो उसको कैसे प्राप्त कर सकती हैं, उसके लिए उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसके लिए उन्हें क्या करना होगा अगर कोई भी उनके साथ न हो, तो ये बहुत आवश्यक है कि ये जो आज हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं ये उस पर हम पूर्ण आपके सामने रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। ये सामाजिक असमानता का बहुत बड़ा कारण रहा है कि पहले महिलाओं की शिक्षा बहुत कम होती थी, बेटी होने पे ही एक माँ को बहुत अच्छे निगाहों से नहीं देखा जाता था। देश में जागरूकता बढ़ी है और ये स्लोगन दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके आधार पर फिर बेटियों को और शिक्षा और उनको अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होने लगे। वास्तविकता तो यह है कि हर स्त्री को भारत में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त है।
2: तो वर्मा जी, जो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था, तो क्या वो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उसमें कुछ कार्य किया गया था?
3: बहुत सही प्रश्न है आपका। उसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए थे और उसमें सेक्शन 13 जो है वो ये बताता है कि आपको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं इवन आफ्टर डिवोर्स, यानी तलाक के भी बाद। तलाक के लिए उनको किस प्रकार का मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, संपत्ति में अधिकार, बहुत सारे अधिकार उसी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कि आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि विवाह विच्छेद का कहीं कोई वर्णन हमारे हिंदू धर्म के किसी भी पुस्तक में प्राप्त नहीं होता है। ये जब बाद में डिवोर्स वर्ड आया जो ग्रीक से निकल के आया और तलाक वर्ड जो उर्दू से हमें प्राप्त हुआ, उससे तलाक से यह हुआ कि विवाह विच्छेद किया जा सकता है। हिंदी में उसे हम विवाह विच्छेद बोल सकते हैं, और विवाह विच्छेद ये बहुत आवश्यक है। कारण यह है कि पति पत्नी के जब तक संबंध बड़े अच्छे होते हैं तो भले ही जन्म जन्मांतर का कहलाए, लेकिन कभी कभी कुछ आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं, दूरियां हो जाती है आपस में, एक दूसरे के प्रति कटुता उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। उस तलाक के लिए अगर वो जाना चाहे तो उसे वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तलाक के प्राप्त करने के जो अधिकार महिला को प्राप्त होते हैं वो इन आधार पे लिए जा सकते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि पति जो है वो किसी महिला के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा उसके साथ क्रूअल्टी होती है
2: जी।
3: क्रूअल्टी का मतलब उसके साथ क्रूरता की जाती है। तीसरा यह है कि पत्नी को पति जो है 2 साल के लिए छोड़ दे, उसे कोई संबंध ही ना रखे। चौथा है कन्वर्जन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, धर्म परिवर्तन। दूसरा मैंने आपको जैसा बताया मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें कि पति की मानसिक स्थिति ही ठीक न रह जाए
2: जी,
3: और पत्नी के लिए उसके साथ रहना ही संभव न रहे, तो ऐसे में भी वो विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकती है, उसका आधार बनता है। एक अन्य है जो शायद बहुतों को न पता हो कि अगर पति किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, इसके अलावा मान लीजिए कि पति जो है वो सन्यासी बन जाए, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है शायद लोगों को ना मालूम हो, वो ये है कि अगर पति नहीं मिल रहा है तो 7 वर्ष बीत जाए
2: अच्छा,
3: तो ये अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है कि इसके अलावा दूसरा विवाह कर लिया है तो वो पत्नी के लिए बहुत ही।
2: और ये वर्मा जी एक चीज मेरे ध्यान में आ रही कि क्या विवाह कर लिया हो या किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो तब भी हो सकता है?
3: बहुत सुंदर सवाल है आपका। मैंने बताया पहले कि सुंदर रस्ते के सिलसिले में तो एडल्ट्री शब्द आता है कि जबकि विवाह नहीं कर रहा है वो किसी औरत के साथ अपने जिसे कहना चाहिए कि गलत संबंध
2: जीवन
3: रखे हुए है तो भी अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ पे ये कि उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं, किसी बिना किसी बात की परवाह किए पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी रख ली और शादी कर ली उससे। अगर वो शादी कर लेती तो ये एक सिंपल सिंपलिसिटर जिसे कहते हैं एक अधिकार बन जाता है कि अब हमें इसके साथ नहीं रहना, विवाह विच्छेद कर सकती है। उसके अलावा एक ये भी है कि पत्नी के साथ जो प्राकृतिक नहीं है अप्राकृतिक यौन संबंध करने का प्रयास करें तो भी वो अधिकार उसको मिलता है कि वो। और एक तो बहुत चाइल्ड मैरिज अगर हो गई है किसी लड़की की, चाइल्ड

0: मैरिज जो है वो लड़की जो है वो महिला जो है 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले वो उसके लिए विवाह विच्छेद के लिए जा सकती है।
1: 18 वर्ष से पूर्व के 18 वर्ष के बाद?
0: देखिए 18 वर्ष के बाद तो वो बालिग हो गई, तो बालिग होने के बाद तो फिर वो अलग से रह करके रह सकती है, लेकिन ये विवाह विच्छेद की बात जहां तक हो रही है,
1: अच्छा,
0: स्वयं सिद्ध मानते हुए उसको ये शादी के लीगली होते हुए भी वो इसको इलीगल माना जाएगा, क्योंकि उसकी चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो नहीं कर सकता है शादी, उसने की है तलाक मान सकती है। ये तो हो गया अधिकार आपके कि डाइवोर्स प्राप्त करने के लिए महिलाओं का, बहुतों को पता ही नहीं होता है, बस वो समझती हैं कि जब पति ने छोड़ दिया हमको तब हम तलाक ले सकते हैं, या डेजर्ट कर दिया तब छोड़ दिया।
1: ये बहुत सी महिलाओं को तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता है कि महिलाएं भी तलाक के लिए मांग कर सकती।
0: नहीं, आपको बहुत सही कहा आपने, विशेषकर हिंदुओं में तो खराब जागृति इतनी है कि वो जानती है कि विवाह विच्छेद ले सकती है वो, लेकिन अन्य धर्म में ऐसा है, भ्रांति रहती है कि वो शायद नहीं ले सकती है।
1: वर्मा जी, एक तो ये बात हो गई कि विवाह के पूर्व क्या अधिकार है, विवाह के पश्चात कैसे तलाक ले सकते हैं, तो जब तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, तो उसके बाद महिलाओं के क्या अधिकार बनते हैं?
0: ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि अधिकतर महिलाओं को ये लगता है कि अब जब डाइवोर्स हो गया तो जो, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविकता में
1: जी।
0: वास्तविकता में भारत में ऐसे कानून हैं जिनके, जिनका सहारा लेके महिलाएं तलाक के बाद भी अपने कुछ अधिकार प्राप्त कर सकती है, यद्यपि उनका वैधानिक रूप से विवाह विच्छेद हो चुका हो तब भी। इसमें पत्नी भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारनी बनती है, और इसमें एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि इसमें ये प्रावधानित है कि यदि कोई पत्नी अपने को अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो उसको ये अधिकार प्राप्त है कि जिस स्थिति में विवाह विच्छेद हुआ था, यानी जो उसका स्टेटस था उस समय, उस स्टेटस के अनुसार से वो भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारनी है।
1: वर्मा जी, ये तो हुआ कि एक लड़की ससुराल से भरण पोषण भत्ता ले सकती है या अपने पति ले सकती है, तो क्या उसके कुछ अधिकार मायके के प्रति भी बनते हैं?
0: बहुत बहुत सुंदर आपका ये प्रश्न, इसलिए वास्तविकता ये है कि उसके बावजूद भी माँ बाप से वो प्राप्त अधिकार प्राप्त करने की अधिकारनी है। पहले सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँ कि हमारा भारतीय जो समाज है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है कि माँ बाप शायद ही ऐसे कोई हो जो अपनी पुत्री को स्वीकार करने में या उसका भरण पोषण करने से, माँ बाप की धन संपत्ति में उसका भी उतना ही अधिकार है, विवाह के बाद भी, विवाह के पहले भी।
1: तो वर्मा जी, एक बात मान लीजिए तलाक हो गया तो वो कहाँ रह सकती है, उसको शेल्टर है क्या कहीं?
0: लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कानून है तो उसको अपने मकान में ही शेल्टर पाने का, यानी उसमें रहने का अधिकार प्राप्त है।
1: और दूसरा प्रॉपर्टी में अधिकार आपने बताया,
0: प्रॉपर्टी के संबंध में बताना चाहूंगा एक चीज और है कि जो प्रॉपर्टी उसने, पत्नी ने अपनी कमाई से पति के साथ खरीदी है, तो उसमें भी जितना हिस्सा उसका पति के साथ उस प्रॉपर्टी में, वो भी उसे डिवोर्स के बाद भी प्राप्त करने का अधिकार।
1: अच्छा, किसी मान लीजिए कि पति पत्नी थे तो पति ने, पत्नी नहीं कमाती, नहीं उसने कोई योगदान है, पति के उसमें जो लीगल वो बनता है पेपर में, रजिस्ट्री वजिस्ट्री में, तो उसमें पत्नी का साथ रहता है, तो उसमें भी उसका अधिकार होता है?
0: यही बहुत सही प्रश्न है आपका। वास्तविकता में बात सिर्फ लीगल है, तो लीगली अगर वो मान लिया गया कि उस संपत्ति में, तो उसको पूरा अधिकार है उसमें। ये सवाल तब उठता ही नहीं कि उसको कैसे प्राप्त किया गया, जब पति ने स्वयं उसको ये अधिकार दिया था कि उस पत्नी का भी उसमें हिस्सा बनेगा, तो वो उसको वापस प्राप्त करने के अधिकार नहीं है,
1: ये तलाक होने के बाद भी।
0: बिल्कुल, तलाक होने के बाद भी।
1: और वर्मा जी, हम लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन बच्चों के अधिकार के बारे में पत्नी और पति का क्या क्या, विवाह विच्छेद के बाद क्या क्या अधिकार हैं?
0: नहीं, आपका बहुत ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, विवाह विच्छेद का सबसे बुरा असर अगर किसी पे पड़ता है तो वो उस बच्चे पे पड़ता है जो पति पत्नी के संसर्ग से होता है। वो ऐसी त्रासदी से गुजरता है जिसमें उसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो सरकार ने यह अधिकार दिया है कि चूंकि माँ जिसने जन्म दिया है, तो पहला अधिकार कस्टडी में बच्चे को रखने का अधिकार माँ के पास है, और माँ यदि उस बच्चे को ठीक से भरण पोषण करने के लिए अगर उसके पास साधन नहीं है तो वो पैसा भी

0: प्राप्त करने का अधिकार पति से है जिससे उसका विवाह विच्छेद हो चुका हो। तो यानी बच्चे के लिए वो भरण पोषण के लिए भी वो अलग से भत्ता प्राप्त कर सकती है और साथ ही अब उस बच्चे को अपने पास रख सकती है। या मैं एक बात बताना जरूर चाहूंगा कि उस बच्चे को रखने का अधिकार तो माँ को मिलता है अधिकतर, कोई असामान्य स्थिति छोड़ करके। अदरवाइज जब माँ के पास बच्चा रहता है तो पति को यह अधिकार मिलता है कि वो उसके अपने बच्चे को देखने के लिए यथा कभी कभी वो जा सकता है और 5-10-15 मिनट उसके साथ बैठ कर के
1: बता सकता है। विजय वर्मा जी, बहुत अच्छी बातचीत हो गई आपके साथ। तो हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो आप चलते चलते क्या हमारे श्रोताओं को या जो हमारे महिलाएं हैं उनके लिए आपका क्या संदेश हो सकता है?
0: जी, मैं ये बताना चाहूंगा श्वास साहब कि महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में जानना जितना जरूरी है, उतना ये भी जानना जरूरी है कि उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, उसके लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिससे महिलाओं को निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर महिलाएं अपने अधिकार को जान गई, उनको उसको प्राप्त करना है, तो उनके सामने कभी कभी ये प्रश्न हो जाता है कि वो अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या करें, कहां से पैसा लाएं, कहां से वकील करें। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में उनको वकील जो है मुफ्त में देने का न्याय में व्यवस्था की गई है। उस वो वकील मतलब मुफ्त में वो उनको वकील दिया जा सकता है महिलाओं को। तो इसलिए इस बात का भी उनमें डर नहीं होना चाहिए कि वो कैसे इस अधिकार को प्राप्त, न्यायालय की तरफ से दिए है और न्यायालय ने उसको एक बस अर्जी देनी होती है और उसमें वो आदेश कर दिया जाता है कि ये इनको सरकार की तरफ से मतलब दिया जाएगा, पेमेंट उसका सरकार करेगी, लेकिन वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत वो उसको विधिक सहायता मिल सकती है पूरी तरह से और उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। ये डर बिल्कुल उनके मन से हट जाना चाहिए और मैं समझता हूँ ये जानकारी प्राप्त करके विवाह विच्छेद के संबंध में वो अपने अधिक जागरूक हो सकती हैं।
1: इतनी जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ बैठे और हमारे श्रोताओं की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद।
2: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

राम संपत के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं समीर के लिखे इस गीत को। आवाज है अर्णव चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की फिल्म है खाकी।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जतिन ललित की बनाई तर्ज पर आइए सुनते हैं समीर के लिखे इस गाने को। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, फिल्म में कुछ कुछ होता है।

बीजू शाह के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे महबूब के लिखे इस गीत को। आवाज थी अलका याग्निक की, फिल्म थी मुझे तेरी कसम। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सब्र सब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए चंद गजलें। पहली गजल आइए सुनते हैं, अहमद नदीम काजमी की लिखी हुई, आवाज है गुलाम अली की।

अभी हम सुन रहे थे अहमद नदीम काजमी की लिखी गजल गुलाम अली की पुरकशिश आवाज में। आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। शाम रात्रि के 8:06 हो गए हैं। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अगली गजल पेशो खिदमत है राजेश रेड्डी की लिखी हुई, आवाज है पंकज उदास की।

राजेश रेड्डी की लिखी गजल आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ।

0: सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्ध NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: इजाजत फिल्मी, अब आइए सुनते हैं आशा भोसले को। इस गजल को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे शराबी फिल्म में किशोर कुमार को। गीत लिखा था प्रकाश मेहरा ने और संगीत दिया था बापी लहरी ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें सबसे पहले सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में ये गीत।

0: और अब आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये अगला गीत।
1: ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

सोनू निगम की आवाज में ही सुन रहे थे आप कार्यक्रम का ये गीत। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं अभिजीत के स्वर में।

0: सुगम संगीत का आखिरी गीत आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में और इंग्लिश में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
2: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे

0: के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: ये 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक

0: बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के लिखे इस गीत को। फिल्म थी गोपी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी उभरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। समय हो गया है रात्रि के 9:25 और 16 सेकंड। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं अमानुष फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारा दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी, SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत उहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
4: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर जाए है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं, तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में, ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है। और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे BLO हो ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी, मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है, और इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गांव हिसाब से देखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी, और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है तो उनके पास BLO जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है, यह एक एन्यूमरेशन एक प्रक्रिया है, तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
2: बिल्कुल,
4: क्यों नहीं करें हम?
2: कहा, और देखिए मैं भी दिल्ली का मतदाता हूं और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, चारों मतदाता हैं और चारों को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था, लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
3: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
2: जी।
3: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे, फिर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूं, जब बलराज मदोक उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस भ्रष्ट भूमिका में अगर हम बात करें जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकीपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
2: जी।
3: तो कहा गया नहीं नहीं ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने, यानी कभी भी तुझ भी मेरी पट भी मेरी। तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
2: बिल्कुल।
3: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गरमा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्ष दल नहीं आए हैं। यानी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में

0: पूरा विश्वास है और समय समय पर सरकारें बदली हैं और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो, अगर मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अच्छा जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECI नेट नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बचाऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं AERO असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है उसका जो दाखला करने की जो उपाय है तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया उनका स्पष्टीकरण दिया है, बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमिटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है, फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया
1: जी।
2: दूसरी बात है राजनीति, इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा, ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ इन दिनों ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है वो, जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है और जो विपक्ष में है उनका और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व तो बनता है, ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है, जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो और भी समय दो, BLO को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो डॉक्यूमेंट्स को एक्सपेंड कर दो या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं कई

0: सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे और लेना भी चाहिए. तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है. बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए. मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है और ऐसे भी लेना चाहिए. ये बात नहीं कि ये उनका दायित्व तो है.
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका की पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं. जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस वो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना या फिर उनके पूरे सेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं. तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत. अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: देखिए, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने भी लाए. और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है. लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है. चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता. और मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है. तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है. अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं. अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है. तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं. तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए. देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है. तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है. पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं. लेकिन जब लोग, देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं. तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली. तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े. मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए. और हम देखिए अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें? लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है. तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत

0: करने के लिए जो चुनाव आयोग है जो चुनाव प्रक्रिया है उसको हम और मजबूत करें, उसमें हैं खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम
1: जी।
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें, तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, न कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ें और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें, और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है, लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई, क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए, तो कई और राजनीतिक दल क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोटियां सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का एक कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की, और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए, मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोले, आज ऐसा यार नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था उसमें भी करना के आवश्यक है, लेकिन थोड़ा SIR जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बेस फिर से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और SIR में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है अभी, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था। ये SIR का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा, इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं हम और SIR के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी शायद पिछले ही हफ्ते की थी कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 18 साल के हो चुके हैं
2: वो एक मरहम जैसा होगा मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था यानी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई

0: कारण से, लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको सबको जोड़ना चाहिए। और शायद आपने जैसे कहा, उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें SIR में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शन होगा। लेकिन आप SIR को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और SIR के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार SIR करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है। पिटीशन देने का लेवल्स ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं, तो आप DO के पास जा सकते हैं, CO के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है। अगर एक जो वैध आदमी जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है, उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल, देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
1: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे, उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता कोई क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी रहता है चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
2: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी SIR प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
2: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: नमस्कार।

इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। समय हो गया है कार्यक्रम रसधारा का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के साथ, जिसे संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। फिल्म है बेताब।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में समीर केल के इस गीत को। संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और फिल्म थी दिल।

निखिल विनय के संगीत निर्देशन में अबाई सुनते ही फैज अनवर के लिखे इस गीत को। आवाज है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की फिल्म है तुम बेन। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से कार्यक्रम रसधारा और समय हो गया रात्रि के 10:13 और 57 सेकंड।

विजू शाह के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे इंदीवर के लिखे इस गीत को। आवाजें थी पंकज उधास और साधना सरगम की, फिल्म थी मोहरा। और अब आइए सुनते हैं माशूक फिल्म में कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें लीजिए सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग मल्हार।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग मल्हार। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: समाचार।

0: एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:05 हुए। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।